0: है आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनने के मकसद से एक जेन मास्टर के पास भेजा। मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को एक साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटा तो मास्टर ने पूछा, तुमने जंगल में क्या सुना? मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों का गुंजन सुना, हवा की धुन सुनी। इस तरह से युवराज बताता चला गया। उसकी सारी बात सुनकर मास्टर बोले, अच्छा है, फिर जंगल जाओ। जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें न सुनाई दे, तब तक लौटना मत। युवराज महल वापस जाना चाहता था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। कई दिन गुजर जाने पर युवराज ने कोई नई आवाज नहीं सुनी तो वो परेशान हो उठा, लेकिन वो ध्यान करता ही रहा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। कुछ दिन बाद वो जेन मास्टर के पास लौटा और बोला, शुरू में बहुत दिनों तक पहले वाली ही आवाजें सुनाई दे रही थीं, फिर मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया, तब मुझे कलियों के खिलने की आवाजें सुनाई देने लगी, मुझे धरती पर पड़ती हुई सूरज की किरणें, तितलियों के गीत और घास के सुबह की ओस पीने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। ये सुनकर मास्टर बहुत खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी होती है। जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुन लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाएं और उनके अनकही शिकायतों को सुन लेता है, वहीं प्रजा का विश्वास जीत लेता है। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

ईमानदारी। श्रीलंका में मेहता शैसा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो परम ईश्वर भक्त और ईमानदार था। वो धर्मशास्त्रों का वाक्य दोहराया करता था कि बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन विष का काम करता है। वह पहले जड़ी बूटियों का एक बड़ा थोक व्यापारी था, लेकिन अब खुद जंगलों से जड़ी बूटियां लाता और उन्हें बेचकर दिन गुजारता था। उसका एक मित्र था लारोटा। वह भी पहले काफी धनी था, लेकिन इन दिनों गरीबी के दिन बिता रहा था। एक दिन मेहता शैसा लारोटा के बागीचे में जमीन खोदकर जड़ी बूटियां तलाश रहा था कि अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। शैसा ने अशर्फियों को देखा, किंतु उसके अंदर की सच्चाई ने लालच को पास भी फटकने नहीं दिया। उसने घड़े को मिट्टी में ही दबा दिया और लारोटा के पास पहुंचकर सूचना दी कि बगीचे में अशर्फियों से भरा घड़ा दबा हुआ है। लारोटा तत्काल बगीचे में उस जगह पहुंचा जहां पर वह घड़ा दबा हुआ था। अशर्फियां देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने शैसा को इनाम देने की कोशिश की तो उसने कहा कि दूसरे का धन विष के समान घातक होता है। लारोटा ने बगीचे की खुदाई करवाई तो उसे अशर्फियों से भरे कई घड़े मिले। शैसा की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसने अपनी बहन का विवाह उससे कर दिया।

एक बार महर्षि व्यास ने अपने बेटे सुखदेव को पढ़ने के लिए राजा जनक के पास भेज दिया। राजा जनक का महल देखकर सुखदेव जी को लगा कि राजा उन्हें क्या उपदेश दे पाएंगे, बेकार में ही पिताजी ने इनके पास मुझे भेज दिया है। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि राजा जनक ने उन्हें कहा, चलिए हम धर्म चर्चा महल में नहीं सत्संग भवन में करेंगे। सत्संग भवन में वो आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ राज कर्मचारी हांफते हुए आए और कहने लगे कि महल के एक कमरे में आग लग गई है। राजा जनक ने शांति से कहा, देखो मैं इस मुनि के साथ ईश्वर संबंधी चिंतन में लीन हूं, आग बुझाने की कोशिश करो, सांसारिक संपत्ति नष्ट होती है तो हो जाने दो। आग की लपटें सत्संग भवन तक पहुंच गई, फिर भी राजा जनक परेशान नहीं हुए, लेकिन सुखदेव अपनी किताबें उठाकर कमरे से बाहर आ गए। जनक जी ने कहा, दुख का मूल संपत्ति नहीं, संपत्ति से प्यार है। हमें केवल वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है, अक्षय संपत्ति के स्वामी और निर्धन दोनों को मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए नाशवान धन संपत्ति के प्रति अपने प्यार को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, तो सबका उपभोग कीजिए, लेकिन उनसे इतना प्यार ना कीजिए कि वो आपको परेशान करके रख दें। बस सुखदेव महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में जनक जी विदेह हैं।

अन्नदान यज्ञ। दक्षिण भारत के संत रामलिंगम स्वामी वल्ललार के पास एक बार कुछ धनाढ्य भक्त चावल, गेहूं, शक्कर, घी आदि लेकर पहुंचे और कहा, महाराज, हम एक यज्ञ करने का संकल्प लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि यज्ञ में आहुति देने का शुभारंभ आप करें। यह यज्ञ आपके सानिध्य में होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, यज्ञ अवश्य होगा। कल सवेरे मैं ऐसा अनूठा यज्ञ करवाऊंगा कि आप सब लोगों को प्रत्यक्ष देव दर्शन होगा। स्वामी जी के आदेश से भोजन के लिए खीर, हलवा आदि व्यंजन तैयार किए गए। स्वामी जी ने पास की झोपड़पट्टी से सभी अभावग्रस्त लोगों को आमंत्रित किया, उन्हें पंक्ति में बिठाया और फिर सेठों से बोले, इन सबको सम्मान के साथ सामूहिक भोजन कराओ। यह अनुभव करो कि तुम यज्ञ में आहुतियां दे रहे हो। ये सब अभावग्रस्त साक्षात देवता बनकर आहुतियां ग्रहण कर रहे हैं। उन भक्तजनों ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में इस अनूठे यज्ञ रूपी भंडारे से उन्हें जो संतोष मिला है वो पहले कभी नहीं मिला था। स्वामी जी ने भक्तजनों को उपदेश देते हुए कहा, जब किसी भूखे असहाय व्यक्ति को भोजन देकर उसकी भूख तृप्त की जाती है, उस समय उसके अंतःकरण से निकला कृतज्ञता का भाव भगवान का आशीर्वाद होता है। मैं इसे जीव कारुण्य आराधना मानता हूं। स्वामी रामलिंगम के अनुयायी अब भी अन्नदान यज्ञ की इस परंपरा का निर्वाह कर

दोस्तों, भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। सत्यजीत रे एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने सिनेमा को जीवन बनाया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने इंडियन सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बनाया, बल्कि एक आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। उनका नाम है सत्यजीत रे। रे सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, वो एक स्टोरी टेलर, विजुअल पोएट और ह्यूमनिस्ट थे, जिन्होंने जिंदगी को कैमरे के थ्रू समझा और दिखाया। रे की जर्नी आसान नहीं थी। उन्होंने कैलकटा के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिया, और उनके पिता एक राइटर और इलस्ट्रेटर थे। इससे उनके अंदर आर्ट और क्रिएटिविटी बचपन से जगी हुई थी। टैगोर के साथ शांति निकेतन से उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स का डीप एक्सपोजर पाया, एक हार्मनी जो उनके सिनेमा में रिफ्लेक्ट होती है। रे इनिशियली कमर्शियल आर्टिस्ट और बुक कवर डिजाइनर थे। उनके हाथों से बनाए गए इलस्ट्रेशंस और टाइपफेस डिजाइन्स इंडिया में टाइपोग्राफी को एक नया डायमेंशन दे रहे थे। उन्होंने सिनेमा को एक सोच और लाइफ की तरह ट्रीट किया। कह सकते हैं कि उनके लिए रील और रियल जिंदगी में कोई बाउंड्री नहीं थी। उनकी पहली फिल्म पथेर पंचाली एक मास्टरपीस है, जो इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा के मैप पर लेके आई। ये फिल्म फाइनेंशियल स्ट्रगल, लैक ऑफ इक्विपमेंट और बिगनर क्रू के साथ बनाई गई थी, फिर भी उसकी ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म ने दुनिया को हिला दिया। रे की फिल्म मेकिंग का सबसे खास पहलू था उनका रियलिज्म और सिंप्लिसिटी का अप्रोच। उन्होंने ड्रामेटिक लाइटिंग या हेवी लाइट सेट्स की जगह नेचुरल लाइट, रियल लोकेशंस और रियल इमोशंस को प्रेफर किया। चाहे रूरल बंगाल का गांव हो या सिटी का एक छोटा सा स्ट्रीट, जहां कैमरा वर्क हर सीन में जीता हुआ लगता था, उन्होंने नेचुरल लाइटिंग का यूज इस तरह किया कि आसपास की रोशनी ही नरेटिव को और इमोशनल बनाती है। लॉन्ग टेक्स का यूज करके रे ने पेशेंस और रिदम को सिनेमा में स्टैब्लिश किया। सीन्स को बिना आर्टिफिशियल इंटरप्शंस के फ्लो होने दिया जाता था। और जब हम साउंड की बात करते हैं, रे एक पायनियर ऑफ नेचुरल साउंड कैप्चरिंग थे। उनकी फिल्म्स में आप सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं सुनते, आप हवा का घूंघट, पेड़ों की सरसराहट और गांव का डिस्टेंट कॉन्वर्जेशन भी महसूस करते हैं। ये बिना आर्टिफिशियल साउंड ट्रैक के रियल वर्ल्ड साउंड डिजाइन का इफेक्ट था। सिनेमा का एक एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, एक यूनिक टेक्निक जो रे लाए, वो था स्टोरी बोर्डिंग और फ्रेम कॉम्पोजिशन का मेटिकुलस प्लान। उन्होंने पथेर पंचाली के लिए फ्रेम्स और सीन को पेंसिल से स्टोरी बोर्ड पर बनाया। इसकी वजह से कैमरा का मूवमेंट हर शॉट में प्रिसाइज और मीनिंगफुल होता, बिना ओवर एडिटिंग के। रे ने कभी फिल्म मेकिंग को नॉइस और स्पेक्टिकल बनने ही नहीं दिया। कैमरा रेयरली बिना पर्पस मूव होती थी। हर पैन, हर क्लोजअप, हर लॉन्ग टेक, हर शॉट नेचुरली स्टोरी को आगे बढ़ाता था।
उनका आर्टिस्टिक सिग्नेचर वो था जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में रेयर था, ह्यूमनिज्म, सिंप्लिसिटी और अंदर के इमोशंस। कहानी कैरेक्टर्स के मन का पार्ट बन जाती थी, डायलॉग्स की जगह विजुअल्स और साइलेंसेस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते थे। रे की दुनिया में बैकग्राउंड साउंड कोई डेकोरेशन नहीं था, वो एक लिव्ड एक्सपीरियंस था, एक लिव्ड स्पेस था, ऐसे क्रिएटेड था जहां आप कैरेक्टर्स के साथ सांस लेते हो, उस स्पेस को, उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को जो सीन में दिखलाई जा रही है उसे फील करते हो। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, एक सिनेमैटिक एम्पथी थी। उनकी फिल्म्स जैसे चारुलता इमोशन और लोनलीनेस को विजुअल से डिपिक्ट करती है और कंचनजंगा फैमिली को एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर कनेक्ट कर देखती है। ये सब रे के आर्ट का एविडेंस है जहां कैमरा और स्टोरी एक ही सोल बन जाते हैं। रे ने कहा था, टेक्निक तभी काम आती है जब वो नोटिस ना हो और इमोशंस फोरग्राउंड पर हों। इस माइंडसेट की वजह से उनकी फिल्म्स टाइमलेस बन गईं। इसीलिए आज भी स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स और स्टोरी टेलर्स पूरे वर्ल्ड में रे के काम को स्टडी करते हैं, क्योंकि उनका सिनेमा एक मीडियम नहीं, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया जहां नरेटिव, लाइट, साउंड और स्पेस एक साथ बिना फ्लैशी डिस्ट्रैक्शंस के एक ड्रीम जैसा वर्ल्ड बनाते थे, जिसमें आप खुद को महसूस कर सकते थे, खुद को देख सकते थे और उसमें जी सकते थे। जी के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है थोड़ी सी गुदगुदी का समय।
2: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है। प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

बासु चैटर्जी, छोटी सी बातों में बड़ी जिंदगी दिखाने वाले निर्देशक। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी कहानियां अक्सर छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं। ऑफिस जाते वक्त बस का वेट, पड़ोस वाली बालकनी में खड़ी लड़की, सैलरी का इंतजार, घर वालों की चिंता और बीच में छोटी सी एक मुस्कान। इन्हीं छोटी बातों को बड़े पर्दे पर लाने वाले डायरेक्टर थे बासु चैटर्जी। 10 जनवरी 1930 अजमेर में जन्मे बासुदा ने सिनेमा को एक नया रास्ता दिया। ना बहुत ज्यादा शोर, ना बड़े सेट, ना हीरो की एंट्री पर हवा के झोंके, बस आम इंसान और उसकी आम सी लगने वाली लेकिन खास सी कहानी। उन्होंने अपना करियर इलस्ट्रेटर और कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया, पत्रिकाओं में काम किया, फिर फिल्म जगत में उतरे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बना ली। मिडिल क्लास के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। उनकी फिल्में देखकर ऐसा लगता था जैसे हम अपनी ही कहानी देख रहे हों। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म रजनीगंधा की। एक सीधी सी कहानी, एक लड़की, दो लोग, दिल का कंफ्यूजन, बस। लेकिन इस फिल्म की खूबसूरती इतनी सुंदर, इतनी सच्ची है। हीरोइन कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लेती, वो बस सोचती है। यादें आती हैं, दोनों लोग अलग अलग तरह उसके जीवन में जगह बनाते हैं। फिल्म नेचुरल आवाज का इस्तेमाल करती है, रियल लोकेशंस, सिंपल डायलॉग्स, ये सब बासुदा की पहचान बन गए। फिर आती है छोटी सी बात। एक शरीर सा लड़का ऑफिस में काम करता है, रोज एक लड़की को देखता है, प्यार करता है, लेकिन कह नहीं पाता। ये कहानी किसी हीरो की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो बस स्टॉप पर खड़ा होकर सिर्फ देख ही रहा होता है। इस फिल्म में अमोल पालेकर का सीधा हल्का सा झिझक भरा किरदार बासु चैटर्जी के सिनेमा की पहचान बन गया। उनके हीरोज माचो नहीं थे, वो डर जाते थे, वो कंफ्यूज हो जाते थे, वो गलती भी करते थे और इसी वजह से वो अपने लगते थे। बासुदा की एक और मासूम सी फिल्म बातों बातों में, मुंबई की लोकल ट्रेन, रोज मिलना, छोटी सी बात से शुरू हुआ रिश्ता और धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्यार। इस फिल्म में शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, शहर खुद एक किरदार था। जी हाँ, उन्होंने स्टूडियो के सेट से ज्यादा असली लोकेशंस इस्तेमाल की। रोड, ऑफिस, छोटा घर, छत, ये सब उनकी कहानियों का हिस्सा बने। उनकी फिल्म मेकिंग की सबसे बड़ी ताकत थी रिदम ऑफ डेली लाइफ। सीन तेज नहीं भागते थे, वो बिल्कुल वैसे ही चलते थे जैसे जिंदगी चलती है। उन्होंने कैमरा को ज्यादा हिलाया नहीं, ज्यादा ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं डाला, डायलॉग्स को भी बिल्कुल सिंपल रखा और कहानी को हवा में नहीं, जमीन पर रखा। उनकी फिल्में मिडिल क्लास सिनेमा का एक आम हिस्सा बनी, ना प्योर कमर्शियल, ना आर्ट सिनेमा, बस एक बीच का रास्ता जो आम आदमी को अपना सा लगता था। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं, टीवी सीरियल भी बनाए। राजानी और ब्योमकेश बख्शी जैसे नाम उनकी सोच की गहराई दिखाते हैं। उन्हें समझ थी कि कहानी का असली हीरो सच्चाई होता है। उनके सिनेमा में महिला किरदार भी बहुत नेचुरल होती थी, वो सिर्फ हीरो की साथी नहीं थी, उसके अपने डिसीजंस थे, अपनी सोच होती थी। बासु चैटर्जी की फिल्में चिल्लाती नहीं थी, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिल में घुस जाती थी, कब कैसे पता भी नहीं चलता था। आज के दौर में जब कहानियां अक्सर बहुत लाउड हो जाती हैं, तब बासुदा की फिल्में याद दिलाती हैं कि सिंप्लिसिटी भी पावर होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, एक नजर भी काफी है। जिंदगी को समझने के लिए बड़ी ट्रेजेडीज की जरूरत नहीं है,
छोटी सी बात भी सब कुछ बदल सकती है। 4 जून 2020 को बासु चैटर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी फिल्में आज भी रोज के जीवन की तरह चलती रहती हैं, लोकल ट्रेन जैसी। जब भी आप किसी बस स्टॉप पर खड़ी हो, जब भी आप ऑफिस के कैंटीन में चुपचाप चाय पी रहे हो, जब भी आप किसी को कहना चाह रहे हो बट कह नहीं पा रहे हो, तब याद करिएगा बासु चैटर्जी ने इसी खामोशी को सिनेमा बनाया। उन्होंने हमें बताया हीरो बनना जरूरी नहीं, इंसान बनना जरूरी है, और शायद इसीलिए उनका सिनेमा आज भी पुराना नहीं लगता, वो हर नए दौर में फिर से जी उठता है। ये थे बासु चैटर्जी, छोटी सी बातों के बड़े कहानीकार।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। इतनी गंदा टाइप सिचुएशन में लड़की दो लड़कों के बीच कंफ्यूज थी। आज के जमाने में कंफ्यूजन और भी बड़ा है। अब चॉइस है, सीन करके रिप्लाई करें या टाइपिंग दिखा के डिसअपियर हो जाएं। लव ट्रायंगल से ज्यादा डेंजरस है ऑनलाइन स्टेटस बाबा। What?

0: कर हिल जाते हैं। उनकी हीरोइन स्ट्रॉन्ग थी, दर्द से भरी हुई थी, लेकिन टूटती नहीं थी। गुरुदत्त का सिनेमा ग्लैमरस नहीं, पोएटिक था। वो कैमरा को आंख नहीं, दिल बना देते थे। म्यूजिक उनकी फिल्म्स की जान होता था, गीत कहानी को आगे बढ़ाते थे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का साथ मिला। ऐसे गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाए जाते थे। लेकिन उनकी पर्सनालिटी और पर्सनल जिंदगी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड थी। सक्सेस मिली तो सही, लेकिन अंदर एक तन्हापन कभी खत्म ही नहीं हुआ। सिर्फ 39 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। बहुत छोटी सी जिंदगी, लेकिन इतनी गहरी छाप छोड़ गए कि आज भी उन्हें लेजेंड कहा जाता है। गुरुदत्त ने हमें सिखाया कि दर्द को छुपाओ मत, उसे कला बना दो। उनकी फिल्में आज भी देखोगे तो लगेगा जैसे कि अपना दिल पढ़ लिया हो। उन्होंने सिनेमा को एक कला बनाया, एक इमोशन बनाया। और जब हम उनका नाम लेते हैं ना, तो सिर्फ एक डायरेक्टर या एक्टर नहीं याद आता, एक एहसास याद आता है। गुरुदत्त हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक कहानी है, और अगर उसे सच्चाई से बताया जाए तो वो अमर हो जाती है।
1: हाँ, देर यू आर, चलो आज पिक्चर देखते हैं।
2: नहीं नहीं, पिक्चर नहीं, आज हम लोग डिस्को जाएंगे।
1: नहीं,
2: चलो जल्दी से चेंज कर लो अभी।
1: क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस?
2: ये भी कोई कपड़े हैं, बिल्कुल बेकार
1: बेकार।

ऋषिकेश मुखर्जी, जिंदगी को मुस्कुराकर दिखाने वाले कहानीकार। दोस्तों, इंडियन सिनेमा में कई बड़े नाम आए, कुछ ने बड़े सेट बनाए, कुछ ने बड़े डायलॉग्स लिखे, लेकिन एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें लोग प्यार से ऋषिदा बुलाते थे। नाम था ऋषिकेश मुखर्जी। उनकी फिल्म मेकिंग देखकर लगता था जैसे कि कोई कहानी अपनी ही स्क्रीन पर चल रही हो। ना ओवर ड्रामा, ना अननेसेसरी हीरोगिरी, बस सीधी साफ दिल से जुड़ी हुई जिंदगी। 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। शुरुआत उन्होंने कैमरामैन और एडिटर के रूप में की। एडिटिंग ने उन्हें एक बहुत बड़ा लेसन दिया। फिल्म की जान होती है उसकी रिदम, और शायद इसी वजह से उनकी हर फिल्म में एक बैलेंस होता है। कॉमेडी भी होती है, आंसू भी होते हैं, लेकिन सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में। उनकी सबसे मशहूर फिल्म है आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का वो कॉम्बिनेशन। लेकिन कहानी का असली हीरो था जीने का नजरिया। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग सिर्फ लाइन नहीं है, ये जिंदगी का सार है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स हमें लाइफ को हेवी नहीं, हल्का लेकर जीना सिखाती हैं। फिर आती है गोलमाल, एक सिंपल सी कहानी, एक लड़का, एक झूठ, और इस झूठ को बचाने के लिए हजार नए झूठ। लेकिन फिल्म में ऐसी टाइमिंग थी, ऐसी सिंप्लिसिटी थी कि आज भी लोग उसे देखकर हंस हंस के रुकते नहीं। उनकी कॉमेडी लाउड नहीं होती, वो सिचुएशन से निकल कर आती है। जैसे घर में पापा का स्ट्रिक्ट होना और बेटे का चुपके अपनी लाइफ जीना, चुपके चुपके। एक और मिसाल, लैंग्वेज पर मजाक, पर प्यार के साथ। ना किसी का मजाक उड़ाया गया और ना किसी को नीचे दिखाया गया। ऋषिदा का एक खास स्टाइल था, वो एक्टर्स को ओवर एक्टिंग करने नहीं देते थे। वो कहते थे, जैसे घर में बात करते हो वैसे ही बोलो, और इसीलिए उनकी फिल्म एक्टिंग नहीं लगती थी, वो रियल लगती थी। उन्होंने मिडिल क्लास को हीरो बनाया, ना बड़े महल, ना फॉरेन लोकेशंस, बस एक नॉर्मल सा घर, डाइनिंग टेबल, छोटी सी प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम में छुपी हुई एक बड़ी सी सीख। उनकी फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना एक ऐसे नौकर का रोल करते हैं जो घर घर जाकर उसे जोड़ते हैं, और फिल्म का मैसेज सिंपल था, घर टूटते नहीं, ईगो से तोड़ दिए जाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा परिवार के साथ बैठकर देखने लायक था। उनकी फिल्में आपको अनकंफर्टेबल नहीं करती थी, वो आपको इंसान बनाती थी। उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में बनाई, और हर फिल्म में एक कॉमन बात थी, ह्यूमैनिटी। ना हीरो परफेक्ट होता था, ना विलन पूरा बुरा होता था, सब इंसान होते थे, गलती करते थे, सीखते थे। आज के दौर में जब सिनेमा में शोर ज्यादा है, तब ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में याद दिलाती हैं कि कहानी दिल से बनेगी, तभी दिल तक पहुंचेगी। वो हमें हंसा कर रुला देते थे, और रुला कर जीना सिखा देते थे, और शायद इसीलिए उन्हें मिडिल सिनेमा का किंग कहा गया। ना प्योर कमर्शियल, ना आर्ट सिनेमा, एक बीच का रास्ता जो सबको अपना सा लगता था। ऋषिदा ने हमें बताया कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, पर उसे सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। और जब तक इंडियन घरों में हंसी गूंजती रहेगी, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में जिंदा रहेंगी।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पहले बालकनी रोमांस होता था, आज बालकनी में सिर्फ कपड़े सूखते हैं और पड़ोसी के वाईफाई का सिग्नल पकड़ते हैं। प्यार भी प्रैक्टिकल हो गया है।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है, और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाए,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे? तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं। जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता? चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए। अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवमस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बन के तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: मंगल पांडे।
3: सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी। कहानी जय है बड़ी पुरानी, मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देशभक्त था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी।
4: दादी जी।
5: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ, कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
4: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
5: हाँ पूछो।
4: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
5: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
4: अच्छा।
5: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
4: अच्छा।
5: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
6: अच्छा।
5: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
4: मंगल पांडे।
5: हाँ मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
6: अच्छा।
5: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति

0: दुनिया रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम चाबुआ की आवाज।
1: बहादुर कशिका।
2: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
3: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
3: अच्छा माँ।
4: माँ, माँ।
3: लो, देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
3: ठीक है माँ।
4: नाश्ता नाश्ता यहीं ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यहीं टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
3: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं।
4: ये देखो दीदी, ये मारा।
3: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
4: अरे ये मारा।
3: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?

0: जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
1: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
0: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
0: अरे क्यों?
4: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
0: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
0: अरे
4: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
0: क्या हुआ? ये क्या है? अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
0: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना?
0: छोड़ दो, मुझे मत मारो। कुछ मत करो।
1: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है। छोड़ दो,
4: बहानेबाजी करती है। जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
1: अरे मेरे बात को छोड़ो,
0: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
1: अब मैं क्या करूं?
0: देवेंद्र।
5: हाँ दीदी।
0: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
5: अच्छा।
0: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
5: अच्छा।
0: हेलो।
6: हाँ बेटा बोलो।
0: पापा पापा।
6: हाँ बोलो बेटा।
0: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
6: कौन घुसा है?
0: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
0: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
5: अच्छा।
7: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको। कशिका को कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
9: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
8: देखो ना सबकी जान बच गई।
2: बहादुर है मेरी बच्ची।
7: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: हड़प्पा संस्कृति, ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक सूत्रों और संदर्भों के आधार पर नाटक प्रारूप में निर्मित की गई है।
2: तो आनंद लीजिए इस हड़प्पा संस्कृति का।
1: जी हाँ,

आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नगर था मोइनजोदड़ो। मोइनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला।

जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोहनजोदड़ो नहीं रहा होगा, कुछ और ही रहा होगा। पर यहाँ की चौड़ी सड़कें, विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे। यहाँ के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था। वे शांति प्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे। उनकी लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहाँ के जनजीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक काल्पनिक कथा।

0: क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुक की दुकान है?
1: जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शिमुक।
0: जी
1: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं, बस देखने के लोभ से चलाया।
1: आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियां, आभूषण?
0: कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए।
1: हाँ, ये देखिए।
0: हाँ,
1: कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो।
0: हाँ, अच्छी तो है मगर।
1: अच्छा, इसे छोड़िए, ये हार देखिए, अभी दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने।
0: वाकई बहुत सुंदर है।
1: तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा।
0: वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है।
1: तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे।
0: जी हाँ।
1: तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा।
0: मगर
1: अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही।
0: जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमर बंद में रखता हूँ।
1: तो फिर ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं। जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा।
0: ठीक है, मुझे मंजूर है।
1: छुपन, अरे ओ छुपन।
2: आया माले।
3: जी माले।
1: देखो छुपन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग, इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर, उस पर इस सौदे की बावत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले।
3: अच्छा वाले।
1: आइए उदंग
0: जी,
1: आप तब तक यहाँ आराम से बैठिए।
0: क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी?
1: हाँ, कुछ देर तो लगेगी। क्या आप जल्दी में हैं?
0: नहीं, कोई विशेष जल्दी तो नहीं है। मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है, अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था, सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे। पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है।
1: अच्छा, तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं?
0: देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर, युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं।
0: जी
1: चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
0: हाँ चलिए।

0: 그런데.
1: माँ आज पानी बड़ा ठंडा था माँ।
2: हाँ, जाकर कपड़े बदल लो बोधा, नहीं तो ठंड लग जाएगी।
1: जाती हूँ माँ, कोई कोठरी भी तो खाली हो।
3: माँ माँ
1: वो देखो पिताजी आ रहे हैं।
3: अरे उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा।
2: हेलो, कोठरी खाली हो गई, अब तुम पहले कपड़े बदलाओ, सुंदर युवक को बाद में देख लेना।
1: माँ जाती हूँ।
4: इधर से आइए जी।
5: जी
4: आइए आइए
5: जी,
4: इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी।
6: नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: बोधा नहीं दिखाई दे रही, क्या अब तक नहा रही है?
3: नहीं, कपड़े बदलने गई है, आ रही होगी।
4: ओ, और सुनाओ यहाँ के क्या समाचार है, कौन कौन आया है?
3: मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा

0: आया है। अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूँ।
1: जी
2: हाँ बेटा
1: जी,
2: ये मेरे पति हैं व्यापारी शिमुख।
3: नमस्कार।
0: प्रसन्न रहो। अरे भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है।
3: जी सब मातृ देवी की कृपा है।
0: अच्छा देखो, स्थान तो तुम्हारा देखा भला ही है।
3: जी
0: उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट फूट गया है, उसे पक्का करवाना है।
3: जी
0: उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी न हो।
3: जी
0: मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है। ऊपर की मंजिल पर कम से कम 2 नहान घर बनवाने हैं जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों।
2: और पिताजी मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो।
0: लो भाई हमारी लाडली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना, बंद कमरे में इसका दम घुटता है।
3: जी मैं समझ गया। काम कब से शुरू करना है?
0: जब से तुम चाहो, कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना, 2-4 दिन में ही सब मंगा दूंगा, बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना।
3: जी बहुत अच्छा, मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा। अच्छा नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: नमस्कार। पिताजी आपने अपने इन मेहमान से मेरा परिचय नहीं करवाया।
0: अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया भाई उदंग, ये मेरी बेटी है बोधा, और बोधा ये लोथल नगर के व्यापारी हैं उदंग।
4: नमस्कार।
2: नमस्कार। लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना? सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं।
4: हाँ ये तो ठीक ही सुना है आपने,
2: पर एक बात बताइए, जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है, तो वो जहाज कीचड़ में धस नहीं जाते?
4: नहीं, गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है, ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है।
2: ओह।
4: तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं।
2: तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया?
4: दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते। हमारे यहाँ सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते, लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है।
2: अच्छा।
4: हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं, फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है, इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सके।
2: और क्या क्या है आपके लोथल में?
0: मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है।
4: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
5: जरा सुनिए।
0: क्या बात है?
5: आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी वो भी आज यहाँ आया हुआ है, उससे मिलेंगे? नहीं।
0: हाँ हाँ लेकिन उदंक,
5: वो तो बोधा से बात कर रहे हैं, चलिए इतने हम लोग उसे देख आते हैं।
0: अच्छा बोधा।
2: जी पिताजी।
0: मेरे मेहमान का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ
2: ठीक है पिताजी, आइए हम उधर चलकर बैठते हैं।
4: हाँ चलिए।
2: अच्छा लोथल में तो
4: रखते हैं।
2: अच्छा तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है?
4: हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं।
2: अच्छा
4: इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है।
2: क्या आप दिलमन भी गए हैं?
4: हाँ व्यापार के सिलसिले में गया था, वहाँ के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते।
2: काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती, लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है।
4: क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके

0: तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं।
1: लेकिन वो तो बस ऐसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे।
0: ओह, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए।
1: क्या मालूम।
2: बोधा, अरे बोधा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे।
0: वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए।
2: अच्छा अच्छा, आप मात्री देवी के दर्शन करना चाहती हो तो चलें।
0: आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है। फिर आप
2: छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है।
0: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने दूर देशों की यात्रा की है, कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं।
2: क्यों आप इस चिलफिरी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं?
1: पिताजी,
2: ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा?
0: आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे।
2: फिर तो हो चुका विवाह। अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा?
0: अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए, मुझे ही लीजिए। मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी की तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो।
2: यानी आप विवाहित नहीं है?
0: नहीं।
2: तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है?

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: ये विज्ञान गीत।

0: से।
1: ये है मुझे परेशान करने की सजा।
2: माँ के आते ही गया दोनों का ध्यान भटक।

0: तभी तपाक से बोली पहेली।
1: हाँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो है मुझे पता, बाकी के नाते मुझे आप ही दो हमें बता। माँ बोलती, इससे पहले बूझो ने पहेली पर तंज कसा
0: और हंसते हुए बोला, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा।
1: दोनों की तनातनी देख माँ ने प्यार से दोनों को समझाया,
0: चलो सभी साथ में समझते हैं जो तुम दोनों ने अभी नहीं बतलाया।

0: इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल बुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया फील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान श्रोता साथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी कार्यक्रम में खेती किसान से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खासतौर पर नई नई पद्धति पर हम बात करते हैं और उन्होंने उनको जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं कि किसान साथी अब अपनी किस तरीके से खेती कर सकते हैं, किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और आने वाले समय में हम किस तरीके से अपनी खेती में मुनाफा कमा सकते हैं। छोटी छोटी कार्य योजना भी हमें बना लेनी चाहिए कि खेती के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे विकल्प हैं खेती किसानी में, तो हमारे किसान साथी कर सकते हैं। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो किसान साथी कड़कनाथ मुर्गा पालन भी कर सकता है और छोटे छोटे बागवानी भी हम लगा सकते हैं और ड्रिप एरीगेशन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। पानी खासतौर पर अब आने वाले समय में हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं, इस पर भी हमें बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज के हमारे ऐसे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान साथी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आखिरकार है क्या, किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, साथ साथ में खजूर की खेती हमारे किसान साथी किस तरीके से कर सकते हैं और कुछ हमारे किसानों के सवाल हैं खेत तालाब को लेकर, उनके सवालों को हम जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में, इस रिपोर्ट को हम सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
3: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से खास तौर पर आज से एक अभियान की शुरुआत की गई है। जी हां, क्योंकि किसान हमेशा से ही इस सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है कि उनके हितों को देखते हुए तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें किसानों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। ऐसे में आज हम इस कार्यक्रम में भी एक खास योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, साथ ही और भी विषय होंगे जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, आप भी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के इस कार्यक्रम में अपने मन से सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसके साथ ही बात होगी शुष्क क्षेत्रों में खजूर की बागवानी की संभावना की। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे खास मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ए के मिश्रा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
3: जी आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान से भी आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर PK यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर एवं हेड है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान में। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद मैडम, सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
3: आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले विषय के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डॉक्टर मिश्रा आपसे सबसे पहले इस योजना के बारे में हम समझना चाहेंगे कि किस तरह की है ये योजना और किस उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया।
4: देखिए, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2015 में 1 जुलाई को हुआ था और इस योजना का सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य यही था कि हर खेत को सुनिश्चित जल प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से और बहुत सालों से देखा जा रहा था कि हमारे देश में सिंचाई की सुविधा इतनी नहीं थी। लगभग 55% हमारा खेत वर्षा पोषित ही होता था और किसानों को जल की उपलब्धता ना होने की वजह से उनकी पैदावार बहुत कम होती थी। तो ये सोचा गया कि अगर हम हर खेत को सुनिश्चित जल प्रदान कर सके तो न केवल हमारे किसानों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उनकी आमदनी में भी आशा अतीत वृद्धि होगी, और जिसका प्रतिपादन पहले किया गया था कि सन 2022 तक किसानों की आमदनी को बहुत बढ़ाना है, तो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था और लगभग 50,000 करोड़ रुपए के एक बजट से बजट का एक प्रावधान किया गया था। और इसमें ये देखा गया कि हम अगर सभी किसानों को उनके खेतों को सिंचित बना सकें तो न केवल उनका उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, न उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और खुशहाली भी आएगी।
3: बिल्कुल, तो इस योजना के बारे में आपने जाना, आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
6: माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दी गई है। इसके तहत देश में सभी कृषि फार्म में संरक्षित सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन लिया जा सके। किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्म सिंचाई के साधन जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन या प्रबंधन विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान अपने खेत और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित ब्लॉक और जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि खजूर की जो बागवानी है उसमें किस तरह की संभावनाएं इस वक्त किसानों के सामने है, आज की स्थिति क्या है, देश के किन किन हिस्सों में खासतौर पर जो खजूर है वो इस वक्त उगाया जा रहा है।
5: किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा, ये जो खजूर की फसल है ये पौधा बहुत ही सख्त होता है और मुख्य रूप से ये आजादी के बाद ही व्यावसायिक रूप से भारत में शुरुआत की गई थी। इसकी सबसे पहले इसको अबोहर में लगाया गया था, अबोहर में व्यावसायिक किस्में शुरू करी गई, उसके बाद ये राजस्थान में फैला, गुजरात में भी इसकी काफी खेती की जाती है
3: जी।
5: और जो खेती की जाती है उसमें सबसे उपयुक्त ये बात है कि इसकी जलवायु कौन सी होनी चाहिए। जिस समय पश्चिमी राजस्थान में तापक्रम 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या देश के दूसरे हिस्सों में होता है, दूसरी फसल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है किसान भाइयों के लिए। लेकिन ये खजूर एक ऐसा पौधा है जिसको 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहां तक कि इससे अधिक तापक्रम पे बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। और जब सर्दी होती है तो ये माइनस तापक्रम को भी, शून्य तापक्रम से भी नीचे तापक्रम को बहुत आसानी से सह सकता है। तो इसकी खेती की संभावनाएं शुष्क क्षेत्रों में बहुत अधिक हैं, और जहां पे पानी की गुणवत्ता की कमी बहुत अधिक है, अच्छे गुणवत्ता वाला पानी नहीं है, वहां भी इसको बहुत आसानी से इसकी खेती को किया जा सकता है
3: जी। बिल्कुल, तो ऐसे क्षेत्र जो जहां पर खेती करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है वहां किसान आसानी से खजूर की खेती कर सकते हैं क्योंकि इसमें सहनशीलता काफी होती है। खेती के दौरान और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: खजूर की खेती मुख्य रूप से अरब या अफ्रीकी देशों में की जाती है और यहीं से ही विश्व भर में खजूर निर्यात किए जाते हैं। विश्व बाजार में खजूर के आयात करने वाले देशों में भारत सबसे बड़े देशों में से एक है। ऐसे में भारत के किसान इनकी खेती कर खजूर के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद कर सकते हैं। खजूर की खेती करने वाले किसान शुरुआत के 4 वर्षों में खजूर के बाग में आसानी से हरे चने, मोठ और तिल की इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं। खजूर की खेती के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है और सौभाग्य से भारत में पश्चिमी राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां खजूर की खेती आसानी से उगाई जा सकती है। इस इलाके में खजूर के फल खाड़ी देशों की तुलना में 1 महीने पहले पक जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी ज्यादा कीमत होती है। यही वजह है कि वर्तमान में सरकार के प्रयासों और वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों की मदद से यहां के किसान खजूर जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जो किसान खजूर की खेती करना चाहते हैं वो बड़े ही

0: खुनेजी, जामली, खदराची, खलास और मेरचूल किस्मों के अलावा नर किस्मों में धनामी मेल और मत्सरी मेल की बागवानी लगा सकते हैं और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अच्छी कमाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि खजूर की खेती किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। तो खजूर ऐसे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां पर पानी की किल्लत होती है और पानी की किल्लत में खास तौर पे खेती करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि आपने बताया कि आधे से ज्यादा खेती हमारी ऐसी है जो वर्षा पर आधारित है, जहां पर सिंचाई के जो संसाधन है वो बेहद ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में ये जो योजना है इसके तहत किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि पानी की जो बचत है वो भी होती रहे और फसल भी अच्छी उगे?
2: इस योजना में तीन मंत्रालयों के द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को समाहित किया गया है और जो सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला जो कार्य किया गया है वो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में जो पुरानी, जो बहुत दिनों से लंबित परियोजनाएं थी उनको शीघ्रता से कम्प्लीट करने के ऊपर बहुत जोर दिया गया, जिससे कि जल संसाधन और जल स्रोतों को पुनः बनाया जा सके और जल उपलब्धता बढ़ाई जा सके। दूसरा, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम था जिसमें वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कार्य हो रहा था, तो उसमें भी उन्होंने देखा कि जहां पर भी हो सके पुरानी संरचनाओं को पुनर्जीवित करना, नई संरचनाओं को बनाना और उसके साथ में मोर क्रॉप पर ड्रॉप का ऑब्जेक्टिव लेकर के माइक्रो इरिगेशन के द्वारा, यानी कि प्रेशराइज इरिगेशन के द्वारा बहुत कम जल उपयोग करके बहुत ज्यादा फसल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। और तीसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, उसमें जो भी कार्य किए जा रहे थे वाटरशेड डेवलपमेंट के, या यानी कि तालाब बनाने के लिए या चेक डैम बनाना, किसी भी प्रकार से जल का संरक्षण करना, और जो उनका उद्देश्य था कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, इस प्रकार से जल संग्रहण करना और इन सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, एक्स सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना और हर प्रकार के वो क्रियाकलाप करना जिससे कि एक तो जब जल उपलब्ध हो तब हम बचा सके और उसके बाद हम जल को बहुत मितव्यतापूर्ण तरीके से फसल उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सके। जिससे
1: इसके लिए किस तरह के तौर तरीके अपनाने चाहिए इसके बारे में जानेंगे आप,
3: लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से एक भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो अपनी बात है।

0: तरफ मारे थोड़ो।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और कुछ हमारे लिसनरों के सवाल हैं, आइए जानते हैं कि उनका किस तरीके का सवाल।
2: मैम, हम 16 एकड़ की खेती पे टपक सिंचाई।
3: विवेक जी, आपका सवाल है कि 16 एकड़ की खेत में आप टपक सिंचाई की जो विधि है वो अपनाना चाहते हैं,
2: सिंचाई पद्धति करना चाहते हैं।
3: ठीक है,
2: उसके लिए हमें पाइप खरीद पर हमें सब्सिडी कैसे और कब मिलेगी
3: जी?
2: और पाइप खरीदने के पैसे देने के बाद या पहले उस सब्सिडी के लिए हमें किससे संपर्क करना पड़ेगा? और पाइप के साइज को लेकर कोई कंडीशन तो नहीं है?
3: ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर मिश्रा बताएं।
4: देखने वाली बात है कि हमारे किसान भाई कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है
3: जी।
4: तो यहाँ की सैंडी लोम सॉयल है और मैं समझता हूँ कि बहुत उपयुक्त होगा आपका ड्रिप इरिगेशन की ओर चलना और स्प्रिंकलर इरिगेशन की ओर चलना। आपको या तो अपने PMKSY की वेबसाइट पे जा करके डायरेक्टली आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, अथवा अपने नगर के जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी, जैसे आपकी फसल की चॉइस हो, उनके वहां जाना पड़ेगा। और लगभग इसमें जहां तक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सवाल है, आपको वहां पे प्रोफेशनल्स के द्वारा डिजाइन करके दिलवाया जाएगा। और जहां तक सब्सिडी का सवाल है, आपको लगभग 80-90% अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हिसाब है, लेकिन तो लगभग किसानों को 90% तक सब्सिडी मिल सकती है और 5 हेक्टेयर तक की लिमिट है।
3: अच्छा,
4: तो 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन 5 हेक्टेयर तक आपको मिल सकती है। और मेरा ख्याल है कि आपका 5 हेक्टेयर के आसपास ही इलाका है सिंचाई के लिए।
3: तो बिल्कुल पाइप के साइज को लेकर भी वो जानना चाहते थे।
4: पाइप के साइज में देखिए, ऐसा है कि फसल कौन सी लगाने वाले हैं, या तो हॉर्टिकल्चर कोई ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं, और उसमें ये है कि कितनी स्पेसिंग है, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो नॉर्मल पाइप साइज अगर मान लीजिए, देखिए मेन लाइन की जो है 4.5 इंच की है और सब मेन की 2.5 इंच की है, तो वो उनका ज्यादा इनको ध्यान नहीं देना है, उसके लिए जो है प्रोफेशनल्स अपने आप ही उनको बता देंगे कि किस प्रकार की पाइप, कितनी प्रेशर वाली, ये सारी जानकारी वो वेल डिफाइंड है, आपको मिल जाएगी।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम

खेती बाड़ी में। और विवेक जी ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो हमारे किसान साथी का सवाल था कि हम किस तरीके से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में ड्रिप पद्धति से पाइप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, सारी जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ पर 3 इलाका है और ड्रिप पद्धति या स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग हमारे किसान साथी कर सकते हैं। और स्कीम्स में उन्होंने बताया कि 80-90% इनमें छूट भी मिलती है, यानी सब्सिडी भी मिलती है। तो अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी या KVK में जाकर संपर्क करना चाहिए और इन योजनाओं का हमें विशेष तौर पर लाभ लेना चाहिए, तभी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान साथी अपनी अभी भी पुरानी पद्धति से खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। अब हमें समय है कि हमें कुछ नई पद्धति से खेती करना होगा, तभी हमारी आय में वृद्धि होगी। जैसा कि लक्ष्य बनाया हुआ था कि 2022 तक हम अपने किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे आंकड़े हैं, एक छोटे छोटे हमारे श्रोता साथियों के लिए सुझाव हैं कि किस तरीके से वो वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक योजनाओं, वो खासतौर पर कृषि विभाग से लाभ लेकर, योजनाओं का लाभ लेकर वो अपने खेती में मुनाफा कमा सकते हैं, नई पद्धति से खेती कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसमें पानी कम लगता है, मुनाफा अधिक होता है। बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं जो हमारे किसान साथियों खासतौर पर झाबुआ जिले के लिए, पथरीला इलाका के लिए बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं और बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनका लाभ हम ले सकते हैं। कार्यक्रम को हम एक गीत सुनते हैं कार्यक्रम में, इसके बाद आपकी हमारी और भी जो हमारे साथी हैं कुछ सवाल हैं उनके बात करना चाहेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, यानी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, आपला रेडियो आपली बात है।

0: એમ તરાપ મારે થોડું
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम में अब जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी तकनीकें हैं, बहुत सारे ऐसे हम अपने बागवानी भी कर सकते हैं। तो बागवानी में अगर खजूर की बात आती है, तो खजूर की खेती हमारे किसान साथी खजूर का बाग किस तरीके से लगा सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत को।
2: किसान भाइयों को इसके बाग लगाने से पहले अच्छी तरह से खेत तैयार होना चाहिए। जो सबसे उपयुक्त समय है इसके बाग लगाने का, वो समय है सितंबर अक्टूबर में पौधे लगाने के लिए, विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में
3: जी।
2: और हम फरवरी, यदि पानी की बहुत अच्छी सुविधा हमारे पास है, तो हम फरवरी मार्च के अंदर भी इसके बाग लगा सकते हैं।
3: अच्छा।
2: बाग लगाने के लिए दूरी हमारी 8x8 मीटर रखनी चाहिए। पास पास में इसलिए नहीं लगाते कि इसकी जो पत्तियां होती है उनमें कांटे होते हैं। यदि हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर चलाने में भी हमको 6x6 मीटर पे परेशानी आएगी और वो आंख में चोट लग सकती है और भी कोई गहरी चोट लग सकती है। इसलिए 8x8 मीटर की दूरी इसके लिए उपयुक्त होती है। अब पौधे लगाने से पहले हमको किस्मों की बातें बहुत जरूरी है। जो हम प्रेस खाने वाली हमारी किस्में हैं, जो हमारी रिपोर्ट में भी बताई गई, खुनेजी है, हलावी है, बरी है, ये किस्में हमारे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा जो छुआरे बनाने के लिए हमारी किस्में हैं, वो मेजजूल है, खलास है, जहीदी है, ये किस्में हमारे लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके बाद में आती है बात प्रवर्धन की, जो हम पौधे कैसे लें पौधे के लिए। अब पौधे के तैयार करने के इसके
3: डॉक्टर यादव जानेंगे इसके बारे में आपसे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। इस वक्त झांसी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शशिकांत जी, आइए उनसे बात करते हैं। शशिकांत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
4: हमारा सवाल ये है कि खेत में तालाब खुदवाने पर क्या अनुदान मिलेगा?
3: ठीक है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, खेत में तालाब खुदवाना चाहते हैं, क्या करें ऐसे में डॉक्टर?
5: देखिए, खेत में तालाब खुदवाना चाहते हैं तो भारत सरकार की तरफ से एक स्टैंडर्ड है कि लगभग 50,000 रूपये तक का अनुदान मिल सकता है, यदि तालाब 15 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा और 3.5 मीटर गहरा, लगभग इतनी साइज का तालाब आप खुदवाना चाहते हैं तो आपको ये 50,000 रूपये के आसपास का अनुदान की व्यवस्था की जा सकती है।
3: जी बिल्कुल, शशिकांत जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ ही
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने कुछ किसानों के सवाल सुने और किसी ने कहा कि हमें तालाब खुदवाना है, क्या कुछ करना पड़ेगा, कौन सी योजना है जिसमें सम्मिलित हम हो सकते हैं। खासतौर पर हम अपने अगर खेत तालाब की बात करें तो चूंकि बरसात अभी आने वाली है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी खेत तालाब का विचार कर सकते हैं और खोद भी सकते हैं और शासन की योजना का इस लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ में खजूर की बागवानी पर भी विस्तार से हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग सब्सिडी दी जाती है, अलग अलग मौसम के बारे में उन्होंने बताया कि किस मौसम में इसको उगाया जाता है, कैसे किया जाता है। अगर बरसात जल्दी आती है या बरसात देर से आती है, उन जगह किस तरीके से बागवानी खजूर की करना चाहिए, उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, हम जानते हैं कि चूंकि अभी बरसात का मौसम आएगा, तो हमारे किसान साथी अगर झाबुआ जिले की करें तो किस तरीके से अपने खेत के पानी को रोक सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, आइए विषय विशेषज्ञ की इस बात को हम सुन लेते हैं।
5: देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब पानी उपलब्ध होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में 4 महीने मानसून की वर्षा होती है और बाकी 8 महीने सूखा रहता है
3: जी।
5: तो निश्चित तौर पर ये जानिए कि पहले तो पानी को इकट्ठा करके रखने की जरूरत है, जो कि हमारी पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाएं जो विभिन्न नामों से जानी जाती है, हर प्रदेश में बहुत सारी है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और उसी से पहले हम लोग अपना काम चलाते थे। लेकिन तो धीरे धीरे जब से ग्राउंड वाटर मोटर के ऊपर ज्यादा जोर हुआ है, बटन दबाते ही पानी मिलने लगा है, तो लोगों ने उनको भुला दिया और अब वो खराब हो गई। लेकिन तो जो बरसात में पानी उपलब्ध होता है पहले उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, धरती के ऊपर भी और मृदा के अंदर भी, दोनों इन सीटू एंड एक्स सीटू दोनों हम बताते हैं, पहले उसको करना जरूरी है और तभी आप उस जल को आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सरफेस पे वाटर आप स्टोर करते हैं तभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, यानी कि भूजल तभी आपको मिल सकता है ट्यूबवेल के द्वारा बटन दबाते ही, यदि आपने पहले भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था की, यानी आपने स्टोर किया है पानी। और दूसरी बात, आपने कहा कि जल का मितव्यता पूर्ण प्रयोग जो है उसमें हमें अपनी पारंपरिक जो जल यानी सिंचाई की विधियां हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने की जो नई विधियां आई हैं जिसमें कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये बहुत आजकल प्रचलन में है, और इनका इनकी बहुत सारी खूबियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, और इनकी दक्षता बहुत अधिक है और कम पानी में बहुत ज्यादा उत्पादन इनसे लिया जा सकता है और साथ में लागत भी बहुत कम आती है और बहुत से अन्य फायदे भी होते हैं, जैसे कि आप इनके साथ ही फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई के ऊपर लगने वाला जो आपका लेबर चार्ज है उसकी भी बचत हो जाती है, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसे आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्रिसाइज इरिगेशन आप दे सकते हैं इन विधियों के द्वारा। और अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी आ रहे हैं कि किसानों को अब बहुत ज्यादा खेत में ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है सिंचाई लगाने के लिए, धीरे धीरे एक तरीके से पूरा ही स्वचालित इरिगेशन सिंचाई विधियां जो है प्रचलन में आ जाएंगी और कहीं कहीं आना लोगों ने अपनाना भी शुरू कर दिया
3: है। बिल्कुल,
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में, और डॉक्टर मिश्रा से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने सुनी है और जाना है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी आने वाले समय में अपने पानी को भंडारण कर सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं, और उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि जहां पर पथरीला इलाका है जहां पर पानी नहीं रुकता है तो वहां पर हमें तालाब बनाने चाहिए, जहां पर जैसे जैसे ही बरसात का मौसम आएगा वो तालाब भर जाएगा और इससे सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारनामे हैं जो हमें अपने सिंचाई पद्धति में अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अपनी खेती बाड़ी में अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक छोटे छोटे ही मार्गदर्शन हमारे जीवन में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि अब नई जमाने से हम आगे बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर अगर स्कीम्स की बात करें तो बहुत सारी सरकार की खेती किसान से जुड़ी स्कीम्स चलाई जाती हैं तो उनका भी हम लाभ ले सकते हैं और हम इस परियोजना में जुड़कर अपनी खेती बाड़ी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ ही वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: एम तरफ मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, हम बहुत तहे दिल से मानते हैं कि रेडियो लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों को रेडियो पर बोलना चाहिए, सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं, सबको। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट रेडियो शुड बी अबाउट पीपल एंड पीपल शुड कम ओवर एंड स्पीक। अपनी बातें कहिए, अपनी भावनाओं को हमारे साथ शेयर कीजिए, जानने दीजिए इस दुनिया को कि आप महत्वपूर्ण हैं।
2: चैन मुझे अब आईना तेरे बिना जिया जाएना।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। जिंदगी के रंग गीतों के संग इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेहमान हैं दिनेश कुमार चौहान साहब। दिनेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं।
3: धन्यवाद सर। मैं दिनेश कुमार चौहान और दिल से आभार प्रकट करता हूँ आपका कि आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, सो मेरा मन गदगद प्रसन्न हो गया। धन्यवाद सर। और मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली से हूँ और वैसे मैं रहने वाला यूपी अलीगढ़ से हूँ, लेकिन वो छोड़े तो काफ़ी एक अरसा हो गया और फिलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ और अपनी दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुसर बसर कर रहा हूँ। सर, मैं जॉब करता हूँ और क्लिंजर फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, मैं उसमें जॉब करता हूँ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने जाना, आपने देखा, चौहान साहब दिल्ली में रहते हैं अपने परिवार के साथ और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। चौहान साहब, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। मुझे और हमारे दोस्तों को सच सच बताइएगा, आपकी नजर में सच बोलना अच्छा है, चुप रहना अच्छा है या झूठ बोलना अच्छा है? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप इन तीन चीजों में से क्या चुनोगे, सच बोलना, चुप रहना या झूठ बोलना?
3: सर, मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी है सच बोलना। हाँ, सच में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन आज के दौर में है ना, लोगों ने झूठ पर चलना ज्यादा सीख लिया है। सच बोलने में लोग कतराते हैं, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है, वो ये है कि सच के रास्ते पे चलना कठिन जरूर है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, इसलिए हमेशा सच बोलो। अगर झूठ बोलना ही है तो वहां पर बोलो जहां पे कि किसी की जान जा रही हो और आपको अगर लगता है कि मेरे जरा सा झूठ बोलने पर इसकी जान बच सकती है, तो वहां झूठ बोलो। नहीं तो हमेशा सत्य बोलो और सत्य के रास्ते पर चलो। बहुत आनंद है सत्य के रास्ते पर चलने में। और कभी किसी का गलत मत सोचो और कभी किसी के साथ गलत मत करो। सर, मैं सब सुबह को जब उठता हूँ और जब पूजा करता हूँ तो सच बता रहा हूँ कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मेरी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे, कभी किसी को ठेस न पहुँचे और दुख न पहुँचे। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ सर।
1: बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना किस तरह की सोच है, किस तरह के विचार हैं चौहान साहब के। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी रंग में डूबा हुआ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत प्यारा। चौहान साहब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पास मौका है कि आप किसी मशहूर हस्ती के साथ बैठ के कुछ बातचीत करना चाहें, एक कप चाय पीना चाहें, तो ऐसी कौन सी हस्ती होगी जिनके साथ आप बैठकर बातचीत करना चाहेंगे?
1: सर पहले तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं कि किसी मशहूर हस्ती के साथ मैं बैठकर चाय पीना चाहूँ। और अगर ऐसी कोई मशहूर हस्ती है भी तो मेरी एक बहुत बहुत प्रिय मित्र हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में नेशनल टीवी पे बहुत सारे सीरियलों में काम कर चुकी हैं और आज भी काम कर रही हैं, जिसका नाम है शांति निषाद, जो कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। मैं नहीं समझता कि उनसे बड़ा मेरे लिए कोई हस्ती होगी, क्योंकि वो एक मेरी मित्र भी हैं। उन्होंने मुझे जीवन में, पहले क्या था कि हर समय टेंशन में रहता था, बहुत मायूस होता था, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, उन्होंने मुझे जीना सिखाया, इस जिंदगी को जीना सिखाया। और उन्होंने, मैं आपको बता दूं सर कि मैं एक हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूं, उन्होंने मुझे बहुत सारे एक्टिंग वगैरह ये सब सिखाई और जब से वो मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बोले तो झिंगा लाला हो गई सर। सो मैं उन्हीं से मिलना चाहूंगा और उन्हीं के साथ एक कप चाय अवश्य पीना चाहूंगा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सुना आपने किस तरीके से वो एक पर्सनालिटी को, एक शख्सियत को, एक हस्ती को मिलना चाहते हैं जिन्होंने इनको जीना सिखाया, जिंदगी के कई गुर सिखाए। जाहिर सी बात है, हम किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बस इसी रंग के साथ साथ एक छोटा सा प्यारा सा एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत बहुत बढ़िया चौहान साहब, एक मजेदार सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आपको बड़ा मजा आएगा। फर्ज कीजिए ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएं, जिनको भी आप मानते हैं, और वो आपसे कहें कि चौहान साहब अपनी तीन इच्छाएं मुझे बताइए, मैं पूरी करता हूं, वरदान देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि वो तीन इच्छाएं आप ही के लिए होनी चाहिए, दुनिया के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए तीन वरदान मांग लो बेटा, देता हूं, लीजिए। तो बताइए वो तीन बातें क्या होंगी।
1: सर अगर मेरे कान्हा जी मेरे सामने प्रकट हो जाएं, मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को मानता हूं, उठते बैठते हमेशा उन्हीं का ध्यान रखता हूं, और अगर वो मेरे सामने प्रकट हो जाएं तो मेरी सबसे पहली इच्छा ये होगी कि प्रभु मुझे ऐसी लगन दो कि एनी टाइम मैं आपके ध्यान में डूबा रहूं, और जब इस दुनिया को छोड़ के जाऊं, इस दुनिया को अलविदा करूं, तो बस आप अपने चरणों में मुझे स्थान दें। सर मेरी दूसरी इच्छा ये है कि भगवान बस ज्यादा नहीं इतना कुछ मेरे लिए कर दीजिए कि मेरे तीन बच्चे हैं, मैं इनके अच्छे से ब्याह शादी कर दूं। डरता हूं इस बात से कि एक जो पिता का कर्तव्य होता है, एक जो पिता का धर्म होता है, प्रभु मैं इससे कहीं वंचित न रह जाऊं। सुख शांति से मैं अपने बच्चों की ब्याह

0: शादी करना चाहता हूं, बस मुझे इतना दीजिए। और तीसरी मेरी ये इच्छा है कि भगवान, मैं जब तक इस दुनिया में जीऊं तब तक मेरे हाथों कभी किसी का बुरा ना हो और मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोस्तों, आपने सुना, बहुत ही सुंदर तीन इच्छाएं प्रभु से मांगते हुए उनका सानिध्य, उनके चरणों में स्थान। अगर इनको उनके चरणों में स्थान मिल गया तो उनकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तीन क्या, 3,000 क्या, 3 करोड़ क्या, क्या बात है, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। चलिए इसी रंग में डूबा हुआ एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया चौहान साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, आपको किस चीज से लगाव है? कोई शख्सियत, मतलब कोई पर्सनालिटी, कोई आदत, कोई शौक, किस चीज से लगाव है आपको सबसे ज्यादा लगाव?
1: सर मेरे को सबसे ज्यादा लगाव अपनी जॉब से है कि मैं जब भी सुबह को जब अपनी जॉब पे जाता हूँ तो बस मेरा काम सुबह से शाम तक जब तक मैं अपनी ड्यूटी पे होता हूँ वो बढ़िया से होना चाहिए और कुशलतापूर्वक उस कार्य को निभाऊं, इसमें मेरा मेरी लगन है और बहुत ज़्यादा रुचि है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे मेरे बॉस दिए हैं। सच में आज वो यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी है ना, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि हे मेरे बांके बिहारी, मेरे बॉस को है ना उस बुलंदी तक लेके जाना जहाँ तक कि दुनिया एक इच्छा अपनी प्रकट करती है, वहां तक मेरे बॉस को है ना उस बुलंदी के अर्श पे बिठाना ले जाके, बस ये मेरी लगन है और अपने कुशलतापूर्वक ड्यूटी को करता हूँ।
0: बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, आपने सुना, बहुत ही प्यारे ढंग से वो अपने बॉस के लिए मांग रहे हैं कि वो ऊंचाइयां छुएं। दरअसल चक्कर ये है, साफ बात ये भी है कि अगर उन्होंने ऊंचाइयां पाई तो जाहिर सी बात है चौहान साहब भी तो उनके साथ साथ ही बढ़ेंगे। कितनी प्यारी सी बात है, आप किसी दूसरे के लिए कुछ मांगिए वो चीज लौट के आपके पास आती है।

0: रुमान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौहान साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जहन में, आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपके इमेजिनेशन में, दुनिया भर में कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आप यात्रा करके जाना चाहेंगे?
1: सर, वैसे यात्रा में तो मेरी ज्यादा रुचि नहीं है, और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। लेकिन अगर कहीं ऐसा मौका आया कि मुझे यात्रा पे जाना पड़ा, तो मैं मेरे दिल की ख्वाहिश है कि जहां पर श्री कान्हा जी की नगरी है द्वारिका, मैं वहां पर मेरी वाइफ को लेके जाना चाहूंगा, द्वारिका नगरी। ये मेरी इच्छा है।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों, अपने ईष्ट देव की नगरी को जाना चाहते हैं चौहान साहब, यात्रा करके अपने परिवार के साथ, बहुत ही सुंदर बात। तो चलिए एक प्यारा सा गीत इसी जगह पर सुनते हैं चौहान साहब के लिए।

0: चौहान साहब, मुझे ये बताइए, क्या चीज ज्यादा खूबसूरत है, प्यार करना या प्यार पाना? समझिए इस बात को, प्यार करना ज्यादा जरूरी है खूबसूरत है या प्यार को पाना ज्यादा जरूरी है खूबसूरत है?
1: सर देखिए, मेरे जिस तरीके से मैं आपको बताऊं और जो मेरे दिलो दिमाग में चलता है कि प्यार है ना दो प्रकार के होते हैं। एक प्यार हो गया कि किसी दूसरे को एक प्यार का मुखौटा पहनाना और प्यार के झांसे में फंसाना और उसके जिस्म को पाना, मैं ये सब बेकार की चीज मानता हूँ। असली प्यार मेरे लिए वो है कि जिस प्रकार से आज के जमाने में वो प्यार कोई नहीं कर सकता। कृष्ण

0: ये जिस्म को पाने के लिए नहीं किया था, वो सिर्फ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तो मेरी तो नजर में, दिलो दिमाग में ये प्यार है, प्यार करना है तो ऐसे प्यार करो।
1: बहुत खूब।
2: दोस्तों आपने जाना कि चौहान साहब कहते हैं कि प्यार करना उनकी नजर में ज्यादा जरूरी है, न कि प्यार को पा लेना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप प्यार करेंगे, पवित्र तौर पे करेंगे, तो प्यार आपको मिल ही जाएगा। तो छटपटाइए मत, इंतजार कीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: चौहान साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमें बताइए कि अगले 6 महीनों में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या प्लान्स हैं अगले बस 6 महीनों का, साल भर का नहीं, सिर्फ 6 महीनों का क्या अचीव करना चाहेंगे आप?
1: सर, मन की सोची कभी होती नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो मेरी दिल की ख्वाहिश है और ये बहुत टाइम से लगती आ रही है, लेकिन कुछ वक्त की ऐसी पाबंदियां हैं, वक्त की प्रॉब्लम की वजह से वक्त नहीं है मेरे पास, एनी टाइम काम में उलझा रहता हूं। अगर 6 महीने के अंदर मैं कुछ करना चाहूंगा तो अपनी बिटिया के हाथ पीले करना चाहूंगा, अपनी बिटिया की शादी करना चाहूंगा, और ये चीज ये है ना।

0: मेरे से नहीं रहा जा सकता, मेरे से रहा नहीं जाता कि पल पल ये चीज है ना।
1: हालांकि देखिए सर, बेटी बेटा कभी किसी के बुरे नहीं होते, लेकिन जब बच्चा हमारा जवान हो जाए तो एक बाप को है ना पल पल पल पल ये लगा रहता है कि यार अब कर दो अब कर दो, लेकिन वक्त की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब बस यही है कि नहीं, अगर 6 महीने के अंदर अंदर भगवान की कृपा हो जाए, आप लोगों का आशीर्वाद हो जाए, तो मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपनी बिटिया के हाथ पीले करना चाहूंगा।
2: बहुत सुंदर दोस्तों, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे चौहान साहब से बात करने में, क्योंकि इनके विचारों में क्लैरिटी स्पष्टता कितनी ज्यादा है। उन्हें बिल्कुल ठीक से पता है, बिल्कुल क्लियर पता है कि उनको अगले 6 महीनों में क्या करना है। बहुत खूबसूरत, और अपने परिवार के लिए वो जी जान लगाना चाहते हैं। दोस्तों सीखने की बात है, हम भी सोच सकते हैं समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए फिर हो जाए एक बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: चौहान साहब, बस एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने सच्चे दिल से इस बात का जवाब देंगे, लेकिन हो सकता है आपको जवाब देने में थोड़ी सी तकलीफ भी हो जाए। आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर रात को 8 बजे के बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाए दुनिया में हमेशा के लिए, तो आपका क्या कहना इस बारे में? आपके स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ेगा? आपकी मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा? जरा सोच के बताइए ना, मजे लीजिएगा इस सवाल का।
1: सर, बहुत ही मजेदार आपने सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं किसी और की क्यों कहूं, मैं अपनी ही कहूंगा कि इंटरनेट अगर 15 मिनट के लिए भी बंद हो जाता है तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है, तो इस दुनिया की आवाम को क्या प्रॉब्लम होगी। मैं अपने ही दिलो दिमाग से सोच के इस बात को रखता हूँ। भाई, इंटरनेट आज के टाइम में हमें एक टाइम खाना ना मिले, लेकिन भैया इंटरनेट बराबर चलना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ आपने रखी है सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर 8 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाए तो इससे है ना हमें कई सारे फायदे होंगे। सबसे पहली बात जो आज कहीं ना कहीं हम अपने ही घर में अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, वो परिवार हमें मिलेगा। दूसरी बात, हम जो है अपनी सेहत को गंवा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, वो सेहत हमें फिर से वापस मिलेगी। तीसरी बात, एनी टाइम हम इंटरनेट पे अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, हमारी नज़र कमज़ोर हो रही है इस मोबाइल की वजह से, इस इंटरनेट की वजह से, तो हमारी आंखों को भी बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि मैं किसकी कहूँ सर, मैं खुद अपनी कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और ये चीज़ होनी चाहिए सर, क्योंकि इससे हमें बहुत फ़ायदे होंगे। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सेहत ठीक रहेगी, हमारी आंखें की और जो एक एक्सपायरी डेट होती है वो आगे को बढ़ेगी सर, और आगे जाएगी। तो सर, ये चीज अगर होती है तो हो जाए।
0: बहुत सुंदर। दोस्तों, आपने सुना, माना कि चौहान साहब इंटरनेट के फेवर में हैं, बहुत ज्यादा फेवर में हैं, लेकिन सच्चाई उनको भी पता है, फायदे उन्हें भी पता है, तो वो संदेश दे रहे हैं। उनको तकलीफ होगी, लेकिन ज्यादा अच्छे के लिए, छोटी मोटी तकलीफ सहन करने के लिए चौहान साहब तैयार हैं। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए फिर सुनते हैं प्यारा सा एक गीत।

0: चौहान साहब, अब हमारे प्रोग्राम के हम उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सबसे एक यही अपील करूंगा कि भैया हमेशा इंसानियत की डगर पे चलो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, चाहे घर हो चाहे घर बाहर कोई व्यक्ति हो, हमेशा सबकी सहायता करो। और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस पे उंगली उठाओ। और खासकर हमारी जो बहन बेटियां होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, और किसी की धन दौलत पे कोई बुरी नीयत मन डालो। तो मेरा यही संदेश है आप लोगों के लिए कि भाई इंसानियत से जियो और कभी किसी के साथ कोई गलत मत करो। और अगर आप इस दुनिया से, देखिए मैं एक चीज कहूंगा आप लोगों से कि अगर हम बुरा करते हैं तो उसका फल है ना, हमें यही मिल जाता है। लोग बुरा करते समय, दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा करते समय यह नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, और उस मजे मजे में अपने अच्छाई के लिए बुरे काम को दूसरे के साथ कर देता है। लेकिन नर्क और स्वर्ग यही जीते जी है, और अगर हम, जब हमारा अंत समय आता है तो हम 6-6 महीने 1-1 साल खटिया गोड़ते हैं, वो क्या है, हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है। और अगर हम सब के साथ हमेशा अच्छा करते हैं तो हमें हंसते बोलते भगवान बुला लेते हैं अपने यहाँ पे, तो ये स्वर्ग है। इसलिए हमेशा इंसानियत से, दया धर्म से जियो, यही मेरा आप सबको संदेश है। जय हिंद, जय भारत, श्री राधे राधे।
0: बहुत बहुत बहुत ही बढ़िया संदेश। दोस्तों, हम अपने दिलों दिमाग में, अपने शख्सियत में, अपने चरित्र में इस संदेश को बैठा सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। और दोस्तों, इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए, और भी इसी तरह के दिलचस्प चरित्रों के साथ, शख्सियत के साथ हम बात करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।
1: कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विश्वास में विश्वास रखते हैं कि रेडियो लोगों का है, लोगों के लिए है, और इसी वजह से आज आप हमारे रेडियो पर आए, हमसे बातचीत की, अपने विचार बताए। बहुत बहुत शुक्रिया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे? तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं, जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता? चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए। अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवमस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रंस ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बन के तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द।

रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूँ। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुमारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: दुनिया, अरे किधर है रे तू?

महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। आइए हो जाए यही गीत।

0: चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय आय आय आय आय आय चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात घुसत जात हम हंसत जात मरत जात मरत जात
1: एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम देने का पूरा मौका देते थे। उन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। आइए सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

0: शिकवा क्या, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है।
1: अरे क्या

महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: अरे दोस्तों,

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: पहला था।
1: देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

इस आग में जलते हो, गहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है।

0: जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाक तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल
1: दो। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: थे हम अकेले,
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले,
1: चार पतंगे चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

देवरन जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

रिम झिम बरसे प्यार।

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवरन साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता।
0: गजलों की शाम के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार कि आप आए। और आज की शाम हमारे प्रोग्राम में जो शायर हैं वो हैं शादाब उल्फत साहब। बाकी की बातचीत हम शादाब साहब से ही करेंगे। शादाब साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार कि आप आए।
2: बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।
0: तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए
2: अच्छा लग रहा है।
0: जी
2: जी
0: प्लेजर इज अवर्स, हमें अच्छा लग रहा है आप इतना दूर से दुबई से हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: माय प्लेजर।
0: तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा प्रोग्राम को शुरू करते हुए, बहुत ही छोटा सा सवाल, कि आपका जन्म कहां पर हुआ, उस जगह के बारे में कुछ बताइए।
2: जी समीर भाई, मेरा जन्म हिंदुस्तान की एक जो स्टेट है यूपी
0: जी,
2: और उसमें एक शहर एक जिला आपने नाम सुना होगा बरेली नाम से।
0: जी हाँ।
2: तो बरेली से आगे एक छोटा सा कस्बा है, बहुत खूबसूरत कस्बा है। जब बरेली से आप नैनीताल जाने के लिए चलेंगे नॉर्थ साइड में
0: जी,
2: तो वहां से तकरीबन 45 किलोमीटर पर बहेड़ी नाम से एक जगह आती है
0: जी,
2: और मैं वही की मिट्टी का बना हुआ हूँ। वहीं से सारी स्कूलिंग पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई है।
0: बहुत
2: बड़ी खूबसूरत जगह है, छोटी सी जगह है और बहुत सब आपस में एक दूसरे को मतलब इस कदर खूबसूरती से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं कि मुझे बड़ी याद आती है वो दिनों की, पुराने दिनों की, बचपन के दिनों की बातें।
0: बहुत खूब बहुत खूब। मैं सिर्फ यूं ही आपको इत्तला करना चाहूंगा कि मैं खुद भीमताल में रह रहा हूं। बहेड़ी से आगे बढ़ेंगे
2: अच्छा।
0: तो खिच्चा आएगा, खिच्चा के बाद रुद्रपुर, रुद्रपुर के बाद हल्द्वानी और फिर भीम।
2: क्या बात है। अरे सर आपने सब मुझे एक एक सेंटेंस में कई चीजें याद दिला दी आपने मुझे उधर की।
0: क्या बात है।
2: क्योंकि मैं खुद भी हल्द्वानी में रहा हूँ तो मुझे सब एक सेंटेंस में आपने याद दिला दिया सारा।
0: बहुत खूब। तो शादाब साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि अपना पहला कलाम हमारे सुनने वालों के लिए आप सुनाए।
2: जी मैं पेश करता हूँ, जिस भी लायक है आपने मुझे समझा इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी भी हूँ।
0: अरे साहब शाब
2: आइए। मैं चूंकि उर्दू में लिखता हूँ
0: जी जी जी,
2: मैं हालांकि बहुत ज्यादा कठिन उर्दू नहीं होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि आसान उर्दू हो, जो हम लोग आपस में बातचीत जिस जबान में जिस लैंग्वेज में करते हैं वही रहे। बहरहाल मैं गजल शुरू करता हूँ
0: जी।
2: मतला इस तरह है समीर साहब के, रेत के पुतले बनाकर साहिलों पर छोड़ना
0: जी,
2: रेत के पुतले बनाकर साहिलों पर छोड़ना, चाहता हूँ राज अपने आंसुओं पर छोड़ना।
0: क्या बात।
2: चाहता हूँ राज अपने आंसुओं पर छोड़ना, राह बनकर साथ मेरे चलने वाले सुन जरा, राह बनकर साथ मेरे चलने वाले सुन जरा, मुझको उसके घर के आगे सीढ़ियों पर छोड़ना।
0: वाह।
2: मुझको उसके घर के आगे सीढ़ियों पर छोड़ना। बहुत शुक्रिया। देखना उस पर असर होकर रहेगा बात को, देखना उस पर असर होकर रहेगा बात को, खत्म करने के बजाय सिसकियों पर छोड़ना।
0: क्या बात है।
2: खत्म करने के बजाय सिसकियों पर छोड़ना, फूल प्यारे फसले गुल में इस बरस तुम यूं करो। ये शेर आपकी नजर
0: जी।
2: फूल प्यारे फसले गुल में इस बरस तुम यूं करो, रंगो बू के सारे झगड़े तितलियों पर छोड़ना।
0: क्या बात है।
2: रंगो बू के सारे झगड़े तितलियों पर छोड़ना।
0: बहुत खूब।
2: एक ही लर्जिश में साबित हो गया वो भूल थी, गजल का आखिरी शेर
0: जी।
2: एक ही लर्जिश में साबित हो गया वो भूल थी, अक्स का बनना बिगड़ना आईनों पर छोड़ना, अक्स का बनना बिगड़ना आईनों पर छोड़ना, रेत के पुतले बनकर साहिलों पर छोड़ना, चाहता हूँ राज अपने आंसुओं पर छोड़ना।
0: बहुत खूब बहुत खूब। चाहता हूँ राज अपने आंसुओं पर छोड़ना। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल साहब। बिल्कुल अल्फाजों के साथ उनका सही इस्तेमाल करते हुए आपने अपने मन के सारे जज्बात उड़ेल के रख दिए साहब। बहुत खूब, बहुत खूब,
2: शुक्रिया सर।
0: तो शादाब साहब, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
2: गजल गायक की मैं एक बात कहता चलूं, आपके साथ शेयर करूं कि हम तो साहब जगजीत साहब के मुरीदों में से रहे हैं।
0: जी जी।
2: और ये शायरी का रोग भी वहीं से लगा है। अपने 11वीं 12वीं क्लास में जगजीत सिंह साहब को सुनते थे।
0: क्या?
2: और उन्हीं की एक मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है, मैं अभी कुछ दिन पहले भी सुन रहा था। शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया हूँ, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया हूँ। सुदर्शन फाकिर साहब की लिखी हुई, उनके कलम से निकली है ये गजल।
0: बहुत खूब।
2: शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया हूँ।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं जगजीत जी की आवाज में शादाब साहब की फरमाइश पर ये प्यारी सी गजल।

0: बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत खूब। आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में शादाब साहब, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जिससे आपको भी थोड़ा सा आराम मिल जाए और हमारे सुनने वालों को आपको समझने में, आपकी शख्सियत को समझने में थोड़ा मदद मिले और मजा आए। आप
1: जी
0: बचपन में क्या बनना चाहते थे शादाब साहब?
1: सर अभी अगर मैं ध्यान करूं पुरानी बातें कि मुझे जब से होश है यानी तकरीबन 10वीं 11वीं 12वीं, तो उस टाइम पर मुझे अब ध्यान आता है, हालांकि उस टाइम उतना सीरियस नहीं कह सकते तो, लेकिन मुझे ध्यान आता है कि शायद मैं राइटर ही बनना चाहता था उस टाइम पर, शायद मैं राइटर ही बनना चाहता था। उसके अलावा जो भी बना हूं वो अलग से बना हूं, लेकिन मैं शायद बनना राइटर ही चाहता था। और आज भी मेरे बच्चे पूछते हैं ये सवाल, तो मैं उनको भी यही कहता हूं कि मैं शायद राइटर बनने के लिए ही पैदा हुआ था।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। आज की उम्र में, आज के वक्त में राइटर बनने का ख्वाब देखना, सपना देखना भी यूं तो देखा जाए काफी महंगा होता है, क्योंकि रोजी रोटी का जुगाड़ राइटर बन के होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा तहे दिल से मानना है कि राइटर और जो शब्दों के साथ खेलना जानते हैं, उन्हीं की बदौलत ही ये दुनिया चल भी रही है। अगर हम कंप्यूटर साइंसेस की बात करें साहब, उसमें खूब कमाई हो जाती है, तो शादाब साहब आप ही बताइए, क्या कंप्यूटर साइंसेस से एक समोसा प्रिंट आउट करके खा सकते हैं?

0: कुकिंग भी आर्ट है, जो
1: बिल्कुल
0: कि आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है, और समोसा तो बिना एक्सपीरियंस बिना तजुर्बे के आई बना ही नहीं सकता कोई भी।
1: बिल्कुल सही फरमाया साहब आपने, बहुत खूब बहुत खूब। और यूं देखा जाए तो मेरे को कभी कभी तो ऐसे ही बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से ऐसा महसूस होता है कि हमें तो हमारा नेशनल फूड घोषित कर देना चाहिए समोसे को। समोसा हम लोग इतना प्यारा लगता
0: समोसे
1: है,
0: हम नहीं चलते
1: पूरे हिंदुस्तान में समोसा बहुत बहुत फेमस है। बहुत खूब। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी एक और गजल हमें सुनाएं, ये हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए।
0: जी मैं पेश करता हूं एक गजल के चार पांच शेर से पहले मैं दो शेर सुनाता हूं ये गजल से, उसके बाद फिर ये गजल सुनाऊंगा।
1: इरशाद
0: मतलब शेर इस तरह है कि तुम्हारी महफिल से उठ गए तो तुम्हें कहीं भी ना हम मिलेंगे, तुम्हारी महफिल से उठ गए तो तुम्हें कहीं भी ना हम मिलेंगे, हमारी छोड़ो यकीन मानो हमारे जैसे भी कम मिलेंगे, हमारी छोड़ो यकीन मानो हमारे जैसे भी कम मिलेंगे। अभी मोहब्बत में ये भी होगा कि रो सकोगे ना हंस सकोगे,
1: ओहो
0: अभी मोहब्बत में ये भी होगा कि रो सकोगे ना हंस सकोगे, घुटन सी जी में रहा करेगी अभी तो ऐसे भी गम मिलेंगे, घुटन सी जी में रहा करेगी अभी तो ऐसे भी गम मिलेंगे। गजल के चार पांच शेर सुनाता हूं समीर साहब।
1: इरशाद, इरशाद साहब।
0: मतलब इस तरह कहा कि ये अंधेरा डर गया था मैं वहीं था
1: जी,
0: ये अंधेरा डर गया था मैं वहीं था, जब उजाला बन रहा था मैं वहीं था,
1: ओहो
0: जब उजाला बन रहा था मैं वहीं था। शेर ये है कि इस तेरी खुशबू से बना था एक हयूला, हयूला कहते हैं उर्दू का लफ्ज है
1: जी,
0: जो हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इमेजरी, या आकृति जिसको कह सकते हैं हिंदी में,
1: ओके विजुअलाइजेशन।
0: तेरी खुशबू से बना था एक हयूला, रूह ने जब वो छुआ था मैं वहीं था, रूह ने जब वो छुआ था मैं वहीं था, रक्त से बिस्मिल हो रहा था तब बताते, रक्त से बिस्मिल यानी रक्स डांस, बिस्मिल दीवानों का डांस
1: जी,
0: रक्स से बिस्मिल हो रहा था तब बताते, हाँ मुझे भी नाचना था मैं वहीं था, हाँ मुझे भी नाचना था मैं वहीं था।
1: बहुत खूब।
0: मर गई लैला वो जिंदा रह गया जब, मर गई लैला वो जिंदा रह गया जब, कैस हैरत से मरा था मैं वहीं था, कैस हैरत से मरा था मैं वहीं था। गजल का आखिरी शेर, तुम ही सब कुछ थे वहां पर मत बताओ, तुम ही सब कुछ थे वहां पर मत बताओ, सब पता है कौन क्या था मैं वहीं था,
1: अरे वाह,
0: सब पता है कौन क्या था मैं वहीं था, ये अंधेरा डर गया था मैं वहीं था, जब उजाला बन रहा था मैं वहीं था।
1: बहुत खूब बहुत खूब भाई, वाह। सच कह रहा हूं शादाब साहब, मैं वहीं था, और तमाम तमाम चीजें जो मेरे सामने गुजरी मैं गवाह था, मैं वहीं था। मैं पार्टिसिपेट भी करना चाहता था, मैं कंट्रीब्यूट भी करना चाहता था, मैं साथ भी देना चाहता था, लेकिन बस कुछ ऐसा हुआ कि ना दे सका, लेकिन मैं था तो वहीं। क्या बात है
0: जी, बिल्कुल,
1: बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारी गजल साहब, मजा आ गया सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब। अब मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: एक गजल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गुलाम अली साहब की, अगर आप सुनवा पाए
1: जी।
0: हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह,
1: वाह वाह क्या बात है, क्या बात है,
0: सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे।
1: बहुत खूब, बहुत ही खूब, वाह वाह, बहुत ही प्यारी गजल है साहब, बहुत ही मीनिंगफुल। और मेरे एक बहुत ही ज्यादा अजीज मित्र हैं, अजीज दोस्त हैं, वो अक्सर इस गजल को गुनगुनाया करते हैं, पूरी तो उनकी भी नहीं आती, लेकिन बस उनसे मोहब्बत है और उनके थ्रू इस गजल से मोहब्बत हो गई। बहुत खूब, आइए दोस्तों सुनते हैं गुलाम अली साहब की ये प्यारी सी गजल शादाब साहब के हुक्म पर।

0: आगे बढ़ते हैं सर, और एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन कहीं से मिल जाए तो क्या मांगेंगे आप?
1: मैं शायद सबसे पहली शायद मैं ये मांगूंगा कि जो मेरा नॉवल है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लें।
0: अरे वाह,
1: जितना भी उर्दू हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं वो तो सारे पढ़ लें उसको।
0: तो कौन सा नॉवल है
1: मेरे ख्याल तीन ही विषय यही मांगूंगा। किराए का घर नाम से एक नॉवल मेरा शायद पहले छपा था उर्दू में, फिर तो उसके बाद पिछले साल वो हिंदी में भी छपा।
0: अरे वाह,
1: तो मेरे ख्याल में मेरी तीनों विषय यही रहेगी सर।
0: क्या बात है। तो नहीं, आप ये जो नॉवल है आपका क्या नाम बताया आपने?
1: किराए का घर।
0: किराए का घर, ये हिंदी में है और ये अमेजोन वगैरह पर है क्या?
1: हाँ, अमेजोन पे है।
0: अच्छा, एक में बहुत खूबसूरत साहब। दोस्तों, आपने सुना शादाब साहब का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत, नाम से ही महसूस हो रहा है कि कुछ तो दम होगी उसमें, कुछ तो बात होगी उसमें। एक किराए का घर, बहुत खूब, ये अमेजोन पर अवेलेबल है। आप सभी साहिबान से गुजारिश है कि आपको मौका मिले तो जरूर एक बार उसको पढ़िए, देखिए शादाब साहब क्या कहना चाहते हैं अपने नॉवल में। बहुत खूब। तो शादाब साहब, आपकी ये तीन विशेष जिन जल्द से जल्द पूरी करें। और आगे बढ़ते हुए मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, एक गजल सुना दे हमारे सुनने वालों के लिए।
1: एक गजल मैंने थोड़ी सी लाइट मूड में समीर साहब कही थी, अगर आप इजाजत दें तो मैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि ये मेरी एक कमजोरी कह सकते हैं इसको आप, चाहे जो है ये कमजोरी है। तो मैंने थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी कि इसको मैं कहीं रिकॉर्ड पे ले आऊं, तो वही एक चीज इसमें उतर के आई है, आप मुलाजा फरमाएं।
0: जी जी जी जरूर।
1: उस गली में जाके कल शब चाय पी।
0: अच्छा।
1: उस गली में जाके कल शब चाय पी, बाद मुद्दत के लगा अब चाय पी।
0: ओहो।
1: बाद मुद्दत के लगा अब चाय पी। उस प्याली के लबों से इश्क था, उस प्याली के लबों से इश्क था, इश्क था सो मैंने अब तब चाय पी। इश्क था सो मैंने अब तब चाय पी, जब दिसंबर जनवरी में ढल गया मैंने उसके साथ में तब चाय पी।
0: ओहो।
1: रो रहा हूं आंख लेकिन खुश्क है, खुश मतलब ड्राई
0: जी।
1: रो रहा हूं आंख लेकिन खुश्क है, यार मेरे छोड़ कर तब चाय पी।
0: वाह वाह।
1: यार मेरे छोड़ कर तब चाय पी, शाम का माहौल आकर छा गया, शाम का माहौल आकर छा गया, याद करके उसको जब जब चाय पी, याद करके उसको जब जब चाय पी। अब नशा चढ़ता नहीं है नींद का
0: जी,
1: आपने भी इसका मतलब चाय पी।
0: वाह।
1: और ये शेर एक खास शेर है, आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हमारी जो बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट की माएं हैं उनका एक जिक्र है इसमें, आप गौर फरमाएं के।
0: इरशाद।
1: एक ये भी फिक्र माँ को खा गई, एक ये भी फिक्र माँ को खा गई, कौन कब सोकर उठा कब चाय पी, कौन कब सोकर उठा कब चाय पी।
0: क्या बात है।
1: उस गली में जाके कल शब चाय पी, बाद मुद्दत के लगा अब चाय पी।
0: बहुत खूब बहुत खूब, वही वाह। इस गजल को सुनकर तो चाय पीने की इच्छा हो गई साहब की, चाय पी जाए। बहुत खूब बहुत खूब। चाय भी एक हमारे पूरे देश में एक ऐसी चीज,
1: कल्चर का हिस्सा है,
0: एक कल्चर का हिस्सा है कि अगर आपने चाय शब्द दो से तीन बार बोल दिया तो लोग बाग दौड़ पड़ते हैं चाय बनाने के लिए या चाय लेने के लिए। और चाहे दो मिनट पहले ही चाय पी क्यों ना हो, लेकिन बस एक कप अब हो ही जाए। बहुत खूब साहब, बहुत खूब, आपने बिल्कुल दिल के तारों को छेड़ दिया साहब। बहुत
1: क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत खूब। तो मैं आगे बढ़ते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि हे आपके ही किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम दोस्तों को सुनवा सके।
1: जैसा मैंने कहा सर, हम तो जगजीत साहब के मुरीदों में से हैं, उनकी तो बेइंतहा गजलें और दिन रात सुनी जा सकती हैं।
0: जी हाँ,
1: मेरी वन ऑफ द फेवरेट, तेरी खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे,
0: क्या बात है क्या बात है, मैं गंगा में बहा आया हूँ, पानी में आग लगा आया हूँ, क्या बात है,
1: हाय हाय हाय,
0: बाप
1: क्या,
0: रे बाप,
1: क्या कहने,
0: खतरनाक। आइए दोस्तों सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में और शादाब साहब की फरमाइश पर ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत खूब शादा साहब, आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा सा अटपटा सवाल पूछना चाहूंगा कि आप मुझे माफ कीजिएगा इस सवाल को पूछने के लिए, लेकिन मजा आएगा। क्या आपकी कोई ऐसी आदत है जो लोगों को नाराज कर देती हो?
1: आदत तो मेरी मतलब आदत तो मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, मेरी कमजोरी है। मुझे थोड़ा सा हालांकि मुझे नहीं होना चाहिए वैसा
0: जी,
1: और मैं कोशिश करता हूँ कि ना हूँ
0: जी।
1: मैं ओवरकम करने के लिए उसको हमेशा फाइट करता हूँ अपने आप से। मुझे जो गलत चीजें होती हुई देखता हूँ तो मैं मतलब एक होता है ना, कई बार ऐसी जगह पे आप गलत चीज होते देख रहे हैं, गलत बात होते देख रहे हैं, लेकिन कुछ उसके सिस्टम के या उसके हिसाब से अपने उसको रोक लेना कई बार जरूरी हो जाता है कि आप उसके खिलाफ उसकी उसकी बुराई सामने ना करें या किसी और तरह से करें।
0: जी,
1: लेकिन वो मैं थोड़ा मेरे चेहरे पे नजर आने लगता है कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है,
0: पसंद नहीं आ रही है,
1: मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है, वो मुझे मैं रोकूं अपने अंदर फिर भी वो चेहरे पर नजर आता है
0: जी।
1: ये और इस चीज को मैं कोशिश करता हूँ कि ओवरकम कर सकूं, मैं फाइट करता हूँ अपने आप से, लेकिन शायद वो मेरी कमजोरी इसको कह लें या आदत कह लें, ये है मेरी एक गलत चीज
0: ओहो,
1: जो कई बार बुरी भी लग जाती है लोगों को अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूं तो।
0: बिल्कुल सही फरमाया साहब आपने, जब लोग कुछ गलत कर ही रहे होते हैं तो उनको कोई टोकने वाला बिल्कुल पसंद होता भी नहीं है। आपने बहुत सही फरमाया, आपने सच्चाई कह दी साहब, उसमें क्या बुराई है। बहुत खूब, तो शादाब साहब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुना दें हमारे श्रोताओं के लिए और मेरे लिए।
1: जी जी बिल्कुल, मैं खास तौर पे आपकी नजर मतलब मुलायजा फरमाए कि ढले दिन के पहलू में सिमटी उदासी को बेदार करके
0: जी,
1: ढले दिन के पहलू में सिमटी उदासी को बेदार करके, लो चांद आ गया है अंधेरे का हर वार बेकार करके।
0: वाह,
1: लो चांद आ गया है अंधेरे का हर वार बेकार करके, वो अपनी ये उलझी हुई बेतुकी और फीकी सी मेरी कहानी, ये उलझी हुई बेतुकी और फीकी सी मेरी कहानी, वो अपनी जबां में सुनाता है मुझको मजेदार करके।
0: वाह,
1: वो अपनी जबां में सुनाता है मुझको मजेदार करके, ये खामोश कोहरे की चादर में लिपटी हुई चांदनी भी, ये खामोश कोहरे की चादर में लिपटी हुई चांदनी भी, सवेरे की बातें सुनाती है लहजे को तलवार करके, सवेरे की बातें सुनाती है लहजे को तलवार करके, ये क्या रोशनी है ये क्या सिलसिला है ये किसकी है आमद, ये क्या रोशनी है ये क्या सिलसिला है ये किसकी है आमद, ये क्यों हर सितारा गुजरता है मुझको खबरदार करके, ये क्यों हर सितारा गुजरता है मुझको खबरदार करके। और आखिरी शेर, अगर कुछ दिनों नफरतों के मजे लेके देखें तो क्या है, अगर कुछ दिनों नफरतों के मजे लेके देखें तो क्या है, तबीयत उलझने लगी है मोहब्बत लगातार करके, तबीयत उलझने लगी है मोहब्बत लगातार करके, ढले दिन के पहलू में सिमटी उदासी को बेदार करके, लो चांद आ गया है अंधेरे का हर वार बेकार करके।
0: भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत ही प्यारी गजल साहब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल, एक एक गजल आपकी बहुत बहुत प्यारी आ रही है, मजा आ रहा है सुनने में साहब, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया।
0: अब आगे बढ़ते हुए मेरी इच्छा तो यही हो रही है कि आपसे गुजारिश करूं कि एक और गजल सुना दें, सुनाई दीजिए इस बात पे फिर एक और गजल।
1: मैं अपनी गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ
0: जी।

0: मतलब ये है कि उसने मेरा सवाल सुना, कुछ नहीं कहा।
1: जी
0: उसने मेरा सवाल सुना, कुछ नहीं कहा। आंखों ने पर जवाब में क्या कुछ नहीं कहा। आंखों ने पर जवाब में क्या कुछ नहीं कहा। हर बात लोग गौर से सुनते हैं अब मेरी। ये शायद मैं अपनी खुद, जिसको कहते हैं हम उर्दू में ताली, और खुद कही, जिसको कह सकते हैं अपनी तारीफ खुद करना। हर बात लोग गौर से सुनते हैं अब मेरी। इस बात का ख्याल रखा, कुछ नहीं कहा। इस बात का ख्याल रखा, कुछ नहीं कहा। ऐसा जवाब सामने आया है क्या कभी। ऐसा जवाब सामने आया है क्या कभी। दो तीन बार कह तो दिया, कुछ नहीं कहा।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: दो तीन बार कह तो दिया, कुछ नहीं कहा।
1: क्या बात है।
0: कहते हैं कोई गम मेरा हमजाद खा गया।
1: जी
0: हमजाद यानी मेरी अपनी जात।
1: जी जी
0: मेरा खुद। कहते हैं कोई गम मेरा हमजाद खा गया। हैरत है मेरे साथ रहा, कुछ नहीं कहा।
1: वाह।
0: हैरत है मेरे साथ रहा, कुछ नहीं कहा। सब हाथ दाद के लिए उठते रहे मगर। सब हाथ दाद के लिए उठते रहे मगर। आंखों में था यही कि नया कुछ नहीं कहा। आंखों में था यही कि नया कुछ नहीं कहा। आधे अधूरे ख्वाब दिखाए गए हमें। आधे अधूरे ख्वाब दिखाए गए हमें। ताबीर में भी कुछ न लिखा, कुछ नहीं कहा। ताबीर में भी कुछ न लिखा, कुछ नहीं कहा। और आखिरी शेर
1: जी इरशाद।
0: नाराज वो रहे तो यकीन हो गया मुझे। नाराज वो रहे तो यकीन हो गया मुझे। मैंने कभी सच के सिवा कुछ नहीं कहा। मैंने कभी सच के सिवा कुछ नहीं कहा।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने सच के सिवा कभी कुछ नहीं कहा। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब, इन बहुत ही खूबसूरत गजलों के लिए। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। इतनी दूर से, दुबई से आपने शिरकत की हमारे प्रोग्राम में, हमें अपनी गजलों से नवाजा। मजा आ गया साहब सुन के, सीरियसली।
0: बहुत शुक्रिया समीर सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और आई एम रियली हैप्पी एंड विशेज यू ऑल द लक्स, ऑल गुड लक, बेस्ट ऑफ लक ऑलवेज फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर एवरीथिंग। रियली हैप्पी।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: गुड टू हियर, गुड टू टॉक टू यू।

दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया फील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान श्रोता साथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर नई नई पद्धति पर हम बात करते हैं और उन्होंने उनको जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं कि किसान साथी अब अपनी किस तरीके से खेती कर सकते हैं, किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और आने वाले समय में हम किस तरीके से अपनी खेती में मुनाफा कमा सकते हैं। छोटी छोटी कार्य योजना भी हमें बना लेनी चाहिए कि खेती के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे विकल्प हैं खेती किसानी में, तो हमारे किसान साथी कर सकते हैं। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो किसान साथी कड़कनाथ मुर्गा पालन भी कर सकता है और छोटे छोटे बागवानी भी हम लगा सकते हैं और ड्रिप एरीगेशन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं और पानी, खासतौर पर अब आने वाले समय में हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं, इस पर भी हमें बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान साथी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आखिरकार है क्या, किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, साथ साथ में खजूर की खेती हमारे किसान साथी किस तरीके से कर सकते हैं और कुछ हमारे किसानों के सवाल हैं खेत तालाब को लेकर, उनके सवालों को हम जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में, इस रिपोर्ट को हम सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
3: जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से खास तौर पर आज से एक अभियान की शुरुआत की गई है। जी हां, क्योंकि किसान हमेशा से ही इस सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है कि उनके हितों को देखते हुए तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें किसानों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। ऐसे में आज हम इस कार्यक्रम में भी एक खास योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, साथ ही और भी विषय होंगे जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन हां, आप भी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के इस कार्यक्रम में अपने मन से सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसके साथ ही बात होगी शुष्क क्षेत्रों में खजूर की बागवानी की संभावना की। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे खास मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर ए के मिश्रा जो कि प्रधान वैज्ञानिक है जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद, किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
3: जी आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान से भी आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर पी के यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर एवं हेड है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान में। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद मैडम, सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
3: जी आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले विषय के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डॉक्टर मिश्रा आपसे सबसे पहले इस योजना के बारे में हम समझना चाहेंगे कि किस तरह की है ये योजना और किस उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया।
4: देखिए, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2015 में 1 जुलाई को हुआ था और इस योजना का सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य यही था कि हर खेत को सुनिश्चित जल प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से और बहुत सालों से देखा जा रहा था कि हमारे देश में सिंचाई की सुविधा इतनी नहीं थी। लगभग 55% हमारा खेत वर्षा पोषित ही होता था और किसानों को जल की उपलब्धता ना होने की वजह से उनकी पैदावार बहुत कम होती थी। तो ये सोचा गया कि अगर हम हर खेत को सुनिश्चित जल प्रदान कर सके तो न केवल हमारे किसानों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उनकी आमदनी में भी अतीत वृद्ध होगी और जिसका प्रतिपादन पहले किया गया था कि सन 2022 तक किसानों की आमदनी को बहुत बढ़ाना है, तो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था और लगभग 50,000 करोड़ रुपए के एक बजट से बजट का एक प्रावधान किया गया था और इसमें ये देखा गया कि हम अगर सभी किसानों को उनके खेतों को सिंचित बना सकें तो न केवल उनका उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, न उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और खुशहाली भी आएगी।
3: बिल्कुल, तो इस योजना के बारे में आपने जाना, आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
6: माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दी गई है। इसके तहत देश में सभी कृषि फार्म में संरक्षित सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन लिया जा सके। किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्म सिंचाई के साधन जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन या प्रबंधन विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान अपने खेत और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित ब्लॉक और जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि खजूर की जो बागवानी है उसमें किस तरह की संभावनाएं इस वक्त किसानों के सामने हैं, आज की स्थिति क्या है, देश के किन किन हिस्सों में खासतौर पर जो खजूर है वो इस वक्त उगाया जा रहा है।
5: किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा ये जो खजूर की फसल है ये पौधा बहुत ही सख्त होता है और मुख्य रूप से ये आजादी के बाद ही व्यावसायिक रूप से भारत में शुरुआत की गई थी। इसकी सबसे पहले इसको अबोहर में लगाया गया था, अबोहर में व्यावसायिक किस्में शुरू करी गई, उसके बाद ये राजस्थान में फैला, गुजरात में भी इसकी काफी खेती की जाती है
3: जी।
5: और जो खेती की जाती है उसमें सबसे उपयुक्त ये बात है कि इसकी जलवायु कौन सी होनी चाहिए। जिस समय पश्चिमी राजस्थान में तापक्रम 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या देश के दूसरे हिस्सों में होता है, दूसरी फसल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है किसान भाइयों के लिए। लेकिन ये खजूर एक ऐसा पौधा है जिसको 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहां तक कि इससे अधिक तापक्रम पे बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। और जब सर्दी होती है तो ये माइनस तापक्रम को भी, शून्य तापक्रम से भी नीचे तापक्रम को बहुत आसानी से सह सकता है। तो इसकी खेती की संभावनाएं शुष्क क्षेत्रों में बहुत अधिक है और जहां पे पानी की गुणवत्ता की कमी बहुत अधिक है, अच्छे गुणवत्ता वाला पानी नहीं है, वहां भी इसको बहुत आसानी से इसकी खेती को किया जा सकता है
3: जी। बिल्कुल, तो ऐसे क्षेत्र जो जहां पर खेती करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है वहां किसान आसानी से खजूर की खेती कर सकते हैं क्योंकि इसमें सहनशीलता काफी होती है। खेती के दौरान और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: खजूर की खेती मुख्य रूप से अरब या अफ्रीकी देशों में की जाती है और यहीं से ही विश्व भर में खजूर निर्यात किए जाते हैं। विश्व बाजार में खजूर के आयात करने वाले देशों में भारत सबसे बड़े देशों में से एक है। ऐसे में भारत के किसान इनकी खेती कर खजूर के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद कर सकते हैं। खजूर की खेती करने वाले किसान शुरुआत के 4 वर्षों में खजूर के बाग में आसानी से हरे चने, मोठ और तिल की इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं। खजूर की खेती के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है और सौभाग्य से भारत में पश्चिमी राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां खजूर की खेती आसानी से उगाई जा सकती है। इस इलाके में खजूर के फल खाड़ी देशों की तुलना में 1 महीने पहले पक जाते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी ज्यादा कीमत होती है। यही वजह है कि वर्तमान में सरकार के प्रयासों और वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों की मदद से यहां के किसान खजूर जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जो किसान खजूर की खेती करना चाहते हैं वो बरही, खुनेजी, जामली, खदराची, खलास और मेलचूल किस्मों के अलावा नर किस्मों में धनामी मेल और मत्सरी मेल की बागवानी लगा सकते हैं और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अच्छी कमाई कर सकते हैं।
3: जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि खजूर की खेती किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। तो खजूर ऐसे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां पर पानी की किल्लत होती है और पानी की किल्लत में खास तौर पर खेती करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि आपने बताया कि आधे से ज्यादा खेती हमारी ऐसी है जो वर्षा पर आधारित है, जहां पर सिंचाई के जो संसाधन है वो बेहद ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में ये जो योजना है इसके तहत किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि पानी की जो बचत है वो भी होती रहे और फसल भी अच्छी हो गए।
4: इस योजना में तीन मंत्रालयों के द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को समाहित किया गया है और जो सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला जो कार्य किया गया है वो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में जो पुरानी, जो बहुत दिनों से लंबित परियोजनाएं थी उनको शीघ्रता से कम्प्लीट करने के ऊपर बहुत जोर दिया गया।

0: जिससे कि जल संसाधन और जल स्रोतों को पुनः बनाया जा सके और जल उपलब्धता बढ़ाई जा सके। दूसरा, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम था जिसमें वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कार्य हो रहा था, तो उसमें भी उन्होंने देखा कि जहां पर भी हो सके पुरानी संरचनाओं को पुनर्जीवित करना, नई संरचनाओं को बनाना और उसके साथ में मोर क्रॉप और ड्रॉप का ऑब्जेक्टिव लेकर के माइक्रो इरिगेशन के द्वारा यानी कि प्रेशराइज्ड इरिगेशन के द्वारा बहुत कम जल उपयोग करके बहुत ज्यादा फसल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। और तीसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, उसमें जो भी कार्य किए जा रहे थे वाटरशेड डेवलपमेंट के यानी कि तालाब बनाने के लिए या चेक डैम बनाना, किसी भी प्रकार से जल का संरक्षण करना और जो उनका उद्देश्य था कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, इस प्रकार से जल संग्रहण करना और इन सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, एक्स सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना और हर प्रकार के वो क्रियाकलाप करना जिससे कि एक तो जब जल उपलब्ध हो तब हम बचा सके और उसके बाद हम जल को बहुत मितव्यतापूर्ण तरीके से फसलोत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सके। जिससे
1: इसके लिए किस तरह के तौर तरीके अपनाने चाहिए इसके बारे में जानेंगे आप।
2: लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से एक भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनों रेडियो अपनी बात है।

0: तड़प मारे थोड़ो।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और कुछ हमारे लिसनरों के सवाल हैं, आइए जानते हैं कि उनका किस तरीके का सवाल।
3: मैम, हम 16 एकड़ की खेती पे टपक सिंचाई।
4: विवेक जी, आपका सवाल है कि 16 एकड़ की खेत में आप टपक सिंचाई की जो विधि है वो अपनाना चाहते हैं,
3: सिंचाई पद्धति करना चाहते हैं।
4: ठीक है,
3: उसके लिए हमें पाइप खरीद पर हमें सब्सिडी कैसे और कब मिलेगी
4: जी?
3: और पाइप खरीदने के पैसे देने के बाद या पहले उस सब्सिडी के लिए हमें किससे संपर्क करना पड़ेगा? और पाइप के साइज को लेकर कोई कंडीशन तो नहीं है?
4: ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर मिश्रा बताएं।
5: देखने वाली बात है कि हमारे किसान भाई कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है
4: जी।
5: तो यहाँ की सैंडी लोम सॉयल है और मैं समझता हूँ कि बहुत उपयुक्त होगा आपका ड्रिप इरिगेशन की ओर चलना और स्प्रिंकलर इरिगेशन की ओर चलना। आपको या तो अपने PMKSY की वेबसाइट पे जा करके डायरेक्टली आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे, अथवा अपने नगर के जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी, जैसी आपकी फसल की च्वाइस हो उनके वहाँ जाना पड़ेगा। और लगभग इसमें जहाँ तक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सवाल है, आपको वहाँ पे प्रोफेशनल्स के द्वारा डिजाइन करके दिलवाया जाएगा। और जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, आपको लगभग 80-90% अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हिसाब है, लेकिन तो लगभग किसानों को 90% तक सब्सिडी मिल सकती है और 5 हेक्टेयर तक की लिमिट है।
4: अच्छा,
5: तो 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन 5 हेक्टेयर तक आपको मिल सकती है। और मेरा ख्याल है कि आपका 5 हेक्टेयर के आसपास ही इलाका है सिंचाई के लिए।
4: तो बिल्कुल, पाइप के साइज को लेकर भी वो जानना चाहते थे।
5: पाइप के साइज में देखिए, ऐसा है कि फसल कौन सी लगाने वाले हैं, या तो हॉर्टिकल्चर कोई ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं, और उसमें ये है कि कितनी स्पेसिंग है, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो नॉर्मल पाइप साइज अगर मान लीजिए, देखिए मेन लाइन की जो है 4.5 इंच की है और सब मेन की 2.5 इंच की है, तो वो उनका ज्यादा इनको ध्यान नहीं देना है, उसके लिए जो है प्रोफेशनल्स अपने आप ही उनको बता देंगे कि किस प्रकार की पाइप, कितनी प्रेशर वाली, ये सारी जानकारी वो वेल डिफाइंड है, आपको मिल जाएगी।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और विवेक जी ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो हमारे किसान साथी का सवाल था कि हम किस तरीके से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में ड्रिप पद्धति से पाइप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, सारी जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ पर 3 इलाका है और ड्रिप पद्धति या स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग हमारे किसान साथी कर सकते हैं। और स्कीम्स में उन्होंने बताया कि 80-90% इनमें छूट भी मिलती है, यानी सब्सिडी भी मिलती है। तो अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी या KVK में जाकर संपर्क करना चाहिए और इन योजनाओं का हमें विशेष तौर पर लाभ लेना चाहिए, तभी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान साथी अपनी अभी भी पुरानी पद्धति से खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। अब हमें समय है कि हमें कुछ नई पद्धति से खेती करना होगा, तभी हमारी आय में वृद्धि होगी। जैसा कि लक्ष्य बनाया हुआ था कि 2022 तक हम अपने किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे आंकड़े हैं, एक छोटे छोटे हमारे

0: करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, यानी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, आपला रेडियो आपली बात है।
1: Thank you.

આજે મારી બેન મારા કાકા મારી કાકીઓ

0: तड़प मारे थोड़ो।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपनी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम में अब जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी तकनीकें हैं, बहुत सारे ऐसे हम अपने बागवानी भी कर सकते हैं। तो बागवानी में अगर खजूर की बात आती है तो खजूर की खेती हमारे किसान साथी खजूर का बाग किस तरीके से लगा सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत को।
2: किसान भाइयों को इसके बाग लगाने से पहले अच्छी तरह से खेत तैयार होना चाहिए। जो सबसे उपयुक्त समय है इसके बाग लगाने का, वो समय है सितंबर अक्टूबर में पौधे लगाने के लिए, विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में
3: जी।
2: और हम फरवरी, यदि पानी की बहुत अच्छी सुविधा हमारे पास है तो हम फरवरी मार्च के अंदर भी इसके बाग लगा सकते हैं।
3: अच्छा।
2: बाग लगाने के लिए दूरी हमारी 8x8 मीटर रखनी चाहिए। पास पास में इसलिए नहीं लगाते कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कांटे होते हैं। यदि हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर चलाने में भी हमको 6x6 मीटर पे परेशानी आएगी और वो आंख में चोट लग सकती है और भी कोई गहरी चोट लग सकती है, इसलिए 8x8 मीटर की दूरी इसके लिए उपयुक्त होती है। अब पौधे लगाने से पहले हमको किस्मों की बातें बहुत जरूरी है। जो हम प्रेस खाने वाली हमारी किस्में हैं, जो हमारी रिपोर्ट में भी बताई गई, खुनेजी है, हलावी है, बरी है, ये किस्में हमारे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा जो छुआरे बनाने के लिए हमारी किस्में हैं वो मेजजूल है, खलास है, जहीदी है, ये किस्में हमारे लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके बाद में आती है बात प्रवर्धन की, जो हम पौधे कैसे लें पौधे के लिए। अब पौधे के तैयार करने के इसके
3: डॉक्टर यादव जानेंगे इसके बारे में आपसे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। इस वक्त झांसी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं शशिकांत जी, आइए उनसे बात करते हैं। शशिकांत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
4: हमारा सवाल ये है कि खेत में तालाब खुदवाने पर क्या अनुदान मिलेगा।
3: ठीक है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, खेत में तालाब खुदवाना चाहते हैं, क्या करें ऐसे में डॉक्टर?
5: देखिए, खेत में तालाब खुदवाना चाहते हैं तो भारत सरकार की तरफ से एक स्टैंडर्ड है कि लगभग 50,000 रुपए तक अनुदान मिल सकता है यदि तालाब 15 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा और 3.5 मीटर गहरा, लगभग इतनी साइज का तालाब आप खुदवाना चाहते हैं तो आपको ये 50,000 रुपए के आसपास का अनुदान की व्यवस्था की जा सकती है।
3: जी बिल्कुल, शशिकांत जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ ही
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने कुछ किसानों के सवाल सुने और किसी ने कहा कि हमें तालाब खुदवाना है, क्या कुछ करना पड़ेगा, कौन सी योजना है जिसमें सम्मिलित हम हो सकते हैं। खासतौर पर हम अपने अगर खेत तालाब की बात करें तो चूंकि बरसात अभी आने वाली है तो ऐसे में हमारे किसान साथी खेत तालाब का विचार कर सकते हैं और खोद भी सकते हैं और शासन की योजना का इस लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ में खजूर की बागवानी पर भी विस्तार से हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग सब्सिडी दी जाती है, अलग अलग मौसम के बारे में उन्होंने बताया कि किस मौसम में इसको उगाया जाता है, कैसे किया जाता है, अगर बरसात जल्दी आती है या बरसात देर से आती है उन जगह किस तरीके से बागवानी खजूर की करना चाहिए, उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों हम जानते हैं कि चूंकि अभी बरसात का मौसम आएगा तो हमारे किसान साथी अगर झाबुआ जिले की बात करें तो किस तरीके से अपने खेत के पानी को रोक सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, आइए विषय विशेषज्ञ की इस बात को हम सुन लेते हैं।
5: देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब पानी उपलब्ध होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में 4 महीने मानसून की वर्षा होती है और बाकी 8 महीने सूखा रहता है
3: जी।
5: तो निश्चित तौर पर यह जानिए कि पहले तो पानी को इकट्ठा करके रखने की जरूरत है, जो कि हमारी पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाएं जो विभिन्न नामों से जानी जाती है, हर प्रदेश में बहुत सारी है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और उसी से पहले हम लोग अपना काम चलाते थे। लेकिन तो अब धीरे धीरे, अब जब से ग्राउंड वाटर के ऊपर ज्यादा जोर हुआ है, बटन दबाते ही पानी मिलने लगा है, तो लोगों ने उनको भुला दिया और अब वो खराब हो गई। लेकिन तो जो बरसात में पानी उपलब्ध होता है पहले उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, धरती के ऊपर भी और मृदा के अंदर भी, दोनों इन सीटू एंड एक्स सीटू दोनों हम बताते हैं, पहले उसको करना जरूरी है और तभी आप उस जल को आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सरफेस पे वाटर आप स्टोर करते हैं तभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, यानी कि भूजल तभी आपको मिल सकता है ट्यूबवेल के द्वारा बटन दबाते ही, यदि आपने पहले भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था की, यानी आपने स्टोर किया है पानी। और दूसरी बात, आपने कहा कि जल का मितव्यता पूर्ण प्रयोग जो है उसमें हमें अपनी पारंपरिक जो जल यानी सिंचाई की विधियां हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने की जो नई विधियां आई हैं जिसमें कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये बहुत आजकल प्रचलन में है, और इनका इनकी बहुत सारी खूबियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, और इनकी दक्षता बहुत अधिक है और कम पानी में बहुत ज्यादा उत्पादन इनसे लिया जा सकता है और साथ में लागत भी बहुत कम आती है और बहुत से अन्य फायदे भी होते हैं, जैसे कि आप इनके साथ ही फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई के ऊपर लगने वाला जो आपका लेबर चार्ज है उसकी भी बचत हो जाती है, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसे आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्रिसाइज इरिगेशन आप दे सकते हैं इन विधियों के द्वारा। और अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी आ रहे हैं कि किसानों को अब बहुत ज्यादा खेत में ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है सिंचाई लगाने के लिए, धीरे धीरे एक तरीके से पूरा ही स्वचालित इरिगेशन सिंचाई विधियां जो है प्रचलन में आ जाएंगी और कहीं कहीं आना लोगों ने अपनाना भी शुरू कर दिया।
3: बिल्कुल,
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपड़ी बातें।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में, और डॉक्टर मिश्रा से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने सुनी है और जाना है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी आने वाले समय में अपने पानी को भंडारण कर सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं, और उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि जहां पर पथरीला इलाका है जहां पर पानी नहीं रुकता है तो वहां पर हमें तालाब बनाने चाहिए, जहां पर जैसे जैसे ही बरसात का मौसम आएगा वो तालाब भर जाएगा और इससे सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारनामे हैं जो हमें अपने सिंचाई पद्धति में अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अपनी खेती बाड़ी में अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक छोटे छोटे ही मार्गदर्शन हमारे जीवन में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि अब नई जमाने से हम आगे बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर अगर स्कीम्स की बात करें तो बहुत सारी सरकार की खेती किसान से जुड़ी स्कीम्स चलाई जाती हैं तो उनका भी हम लाभ ले सकते हैं और हम इस परियोजना में जुड़कर अपनी खेती बाड़ी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ ही वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: शराब मारे थोड़ो।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, खास तौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
6: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस

0: ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है, सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
1: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
2: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
1: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
3: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना, कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथियों इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, आपना रेडियो अपनी बातें।

0: तड़प मारे थोड़ो
1: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस भीली गीत को सुना और ये गीत खास तौर पर विवाह में बजाया जाता है तो अभी आपने इसका आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
2: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
3: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
4: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
2: इसके अलावा गर्मी के दिनों

0: अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
1: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
2: पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
3: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फिर एक गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो अपनी बातें।

Lagi,

अपनी लड़ाई लड़वा मत, रामे राम जी मारा भाई मारी बहनों मारा काका मारी काकियों।

0: તરાપ મારે થોડો
1: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
3: गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
4: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा। उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
3: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
4: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है। और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
3: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
4: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं, बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा, इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
3: विशेषज्ञों से दी गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
0: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और

0: अच्छी जो उन्नत किसान हैं वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपरू रेडियो आपरी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यार से गीत को। नमस्कार।

0: तड़प मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आज के कलाकार के इस मंच पर दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा जानते हैं ये मंच है नए गायकों का, नई गायिकाओं का, नए टैलेंट्स का। और मुझे बहुत खुशी है आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में है मालविका दास मैम तिनसुकिया आसाम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दास मैम। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ हैं आप?
2: जी धन्यवाद, मैं मालविका दास तिनसुकिया आसाम से आप सभी का दिल से साधुवाद। मेरा खुद संगीत महाविद्यालय है जिसका संचालन मैं खुद करती हूँ और तिनसुकिया में ही रहती हूँ।
1: दोस्तों आपने सुना मालविका मैम एक संगीत विद्यालय चलाती हैं। हम लोग तो इधर से उधर से किसी तरीके से संगीत सीखते हैं, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे बीच में एक संगीत की टीचर भी है जो दरअसल हमें कई बारीकियां भी बता पाएंगी संगीत के बारे में। बहुत खूब, बड़ी ही शानदार बात मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को मालविका मैम के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत ही प्यारा गीत मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मेरा बचपन से ही संगीत में रुझान रहा है, जिसको देखते हुए मेरे माता पिता ने मुझे अवसर दिया और मैं यहाँ तक पहुंच पाई। जी
0: तो बचपन से ही आप संगीत में जाना चाहते थे, आपका सपना था कि आप गायिका बने। और
1: जी,
0: मैं आपको बहुत बहुत खुशकिस्मत मानूंगा, आपका सौभाग्य है कि आपको वही दिशा आपको दिखाई भी गई, आपके माता पिता ने आपको सहायता दी और आज आप एक संगीत विद्यालय चला रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया और बात हो भी क्या सकती है। बहुत खूब दोस्तों, तो चलिए फिर एक संगीत विद्यालय को एस्टैब्लिश करने वाली मैम मालविका मैम की ही आवाज में सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा संगीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि यूं तो अब आप एक संचालिका हैं, टीचर हैं, लेकिन आपके फेवरेट टीचर कौन रहे और क्यों?
1: वैसे तो मेरा शिक्षक शिक्षकों से काफी लगाव रहा है
0: जी।
1: क्योंकि काम के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रही हूँ। जहाँ तक पसंदीदा शिक्षकों की बात है तो वो है मेरी माँ।
0: जी,
1: माँ है जो पल पल मुझे सलाह देती रहती है।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी माँ का नाम हमें बताएं?
1: मेरे माँ का नाम कल्याणी घोष।
0: जी, कल्याणी घोष माँ।
1: जी,
0: तो दोस्तों आपने सुना, सबसे अच्छी टीचर मालविका मैम की जो है वो उनकी माँ है। यूं तो हम सब की टीचर सबसे पहली माँ ही होती है, लेकिन कितनी बार हम अपनी माँ को, माँ दूर भी होती है तो कितनी बार हमने अपना फोन उठाया और माँ को बोला, माँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। क्या बात है भाई, वाह मालविका मैम, आपके कहने से मुझे मेरी माँ याद आ गई। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अगला गीत जो मैं मालविका मैम की माँ को ही समर्पित करूंगा।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए मैम आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, आपकी परिभाषा बताते हैं, ऐसे कौन से तीन शब्द आप इस्तेमाल करेंगी अपने को बताने के लिए?
1: जी, मेरे जीवन को जो सबसे अधिक परिभाषित किया वो है लक्ष्य, गोल।
0: जी।
1: दूसरी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कड़ी
0: जी,
1: मेहनत। थर्ड वाला है हार्ड वर्क, मेहनत।
0: मेहनत
1: जी
0: भाई, वाह क्या बात है, बड़े ही खूबसूरत तरीके से तीन शब्द मालविका मैम ने बताए। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए ना एक गीत भी सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा गीत। मैम, अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार कोई भी खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: चलिए, जो सबसे पहले मैं बनाने की बात है तो वो मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी,
0: ओ,
1: टी, लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: अरे वाह, ओके ओके।
1: चाय बनाई लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: जी तो
1: जी,
0: ये कब की बात है मैम? आप,
1: ये मैं स्कूलिंग का टाइम में, तब मम्मी बोली थी एक कप चाय बना के लाओ, सबको खिलाओ खिलाओ।
0: अच्छा,
1: तो मैंने बहुत उत्सुकता से बनाई थी। मैं, मेरे पापा ऑयल इंडिया में नौकरी करते थे, तो
0: जी
1: हम लोग का मतलब ऐसे गैस थे, मतलब लाइन गैस बोलता है, तो उसमें हमने चाय बनाई। फिर बहुत एक्साइटमेंट, मैंने चाय बनाऊंगी सबको पिलाऊंगी, फिर उसमें मैंने चीनी डाला नहीं, लेकिन सबने पी लिया, बहुत टेस्टी हुआ। बोला बाद में मैं पी के देखी, तो इसमें तो चीनी है ही नहीं।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना अच्छा, अजीब सा लगा होगा, लेकिन मजा हाँ, भी आया होगा। मम्मी पापा ने डांटा भी नहीं होगा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा। जी जी, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत मैम की ही आवाज में।

0: तो आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए मालविका मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जहां तक मेरी हॉबीज की बात है तो मैं बताना चाहूंगी कि सुबह उठना,
0: जी
1: बागवानी के देख रेख करना, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरा शौक है,
0: जी
1: और खाना बनाना और गाना गुनगुनाना, सारा दिन मैं गाना गुनगुनाती रहती हूँ।
0: बहुत खूब,
1: यही
0: वेरी नाइस,
1: जी।
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। मैम पूरे दिन में हम लोग सारा काम करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, सारी दुनिया चलती रहती है, क्या कुछ किसी भी दिन में डेली रूटीन में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मूड खराब हो जाए? कौन सी ऐसी चीज होती है जो आपका मूड खराब कर सकती है किसी भी दिन?
1: मूड खराब ऐसे तो कभी होता नहीं मूड खराब, मैं हमेशा कभी कभी होता है, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट स्टूडेंट को सिखाती हूँ, स्टूडेंट को लेके बैठ रही हूँ, तो उन लोग को मैं जब होमवर्क नहीं करता, जैसे कि मैंने बोल दिया आज ये लेसन करके आओ तुम लोग गा के बताओ, तो कई कई आजकल के बच्चे तो करते ही नहीं बहुत काम, तो तब मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ मैं आज नहीं सिखाऊंगी तुम लोग चले जाओ, उसी में मुझे मूड खराब हो जाता है। जी
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं समझ गया आपकी बात। सवाल दरअसल बिल्कुल सही था कि ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट दिया है वो अगर नहीं होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपने अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मैम आज तक की जिंदगी में, मतलब टिल टुडे आपकी जो भी पूरी जिंदगी में सबसे अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट, आपको क्या लगता है कि ये सबसे अच्छा मेरे को जिंदगी में मिला, मैंने पा लिया? जैसे कुछ लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का सपना सोचते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज या आर्मी में जाने का, या कोई अवार्ड लेने का, या कोई शील्ड जीतने का। तो ऐसा कौन सा अकॉम्प्लिशमेंट आपको आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा हुआ है, जहां आपको लगा हो बस मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा दिन है?
1: समझ गई मैं अभी।
0: जी
1: एक्चुअली मैं जब एक बार मैंने एक बड़ा बड़ा आर्टिस्ट के साथ मैं रिकॉर्डिंग किया था,
0: जी
1: जो हमारे आसाम की जुवेन गार्ड सर से, मैं उनके साथ मैंने एक गाना गाई थी। तब मैं बहुत नर्वस भी थी, तो मैं खुद को भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मैं उनके साथ गाना गाने का मुझे मौका मिला है। तो उसी टाइम उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, गौरवपूर्ण उपलब्धि था मेरा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सपनों में विश्वास रखते हैं? रात को सोते हुए देखने वाले सपने और खुली आंखों से देखते हुए अपने उन सपनों को पूरा करने वाले सपने?
1: जी जरूर। लेकिन उस सपनों में नहीं जो रात को सोने में आते हैं, बल्कि उस सपने में विश्वास करती हूँ जो दिन में दिखे जाए।
0: अरे वाह जी,
1: जी
0: उन सपनों में आप विश्वास रखते हैं, क्यों,
1: जी
0: ऐसा क्यों?
1: रात का सपनों में मैं विश्वास नहीं करती, मतलब सपना में तो सपना तो आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ,
0: जी जी जी
1: लेकिन जो दिन में जो हम लोग का शुरुआत करते हैं दिन का, वो मतलब मैं उसको मैं विश्वास करती हूँ। जो आज मुझे ये करना है वो करना है, जो मैं सोचती हूँ मुझे वही करना है, कैसे काम करना है, कैसे चलना है, वही मैं उसी में मैं विश्वास रखती हूँ।
0: ओके बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना कि मालविका मैम उन सपनों में विश्वास रखती हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको मेहनत करनी होगी। क्या बात है, बहुत
1: जी
0: बढ़िया। चलिए एक प्यारा सा गीत सुना दीजिए, मालविका मैम जी की आवाज में सुनते हैं। आइए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया मैम, मुझे बताए ना कि आपकी जिंदगी में अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट आपको क्या मिला है और किसने दिया है?
1: वैसे तो बहुत तोहफा मिला है
0: जी,
1: लेकिन सच्चा तोहफा तो वो है जो एक मित्र बुरे समय में खैरियत पूछे और आश्वासन देते रहे कि घबराना मत, मैं हूं ना।
0: अमेजिंग, बड़ी ही खूबसूरत बात कही आपने, बड़ी ही प्यारी बात कही कि ऐसे समय में जब इस वक्त हम बहुत कभी कभी परेशान महसूस करते हैं, शायद कमजोर भी महसूस करते हैं, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा जानने वाला आपको आपसे बात करता है, आपको महसूस कराता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसी से बहुत ताकत मिल जाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा संगीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम, हम अपने प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए और जो नए सिंगर्स आ रहे हैं और जो सिंगिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहिए।
1: जी, मैं सबको धन्यवाद कहती हूँ जो मेरा गाना आप लोगों ने सुना है
0: जी।
1: और आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि एक बार सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।
0: बहुत बढ़िया
1: जी
0: दोस्तों, देखिए बहुत ही छोटा सा बिल्कुल क्रिस्प मैसेज है मालविका मैम का कि सुनने के बाद बताएं जरूर कि कैसा लगा, जिससे कि फीडबैक हो तो हम अपनी प्रतिभा को और सुधार सकें, कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर सकें। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। थैंक यू सो मच मालविका मैम हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू
1: थैंक यू थैंक यू।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार, जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त नितिन, और आज मेरे साथ श्री अनुपम मिश्रा जी जुड़े हैं। अनुपम जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: थैंक यू।
0: अनुपम जी, हमारे सुनने वालों को कुछ अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: जी सर। सर, मेरा छोटा सा परिचय है। विष्णु की तिथि और श्री बड़ा भगवान की पावन भूमि श्री सोनोजी धाम का दासगंज उत्तर प्रदेश के श्री सरल धाम में जन्मा अनुपम मिश्र अणु साहित्यकार कवि गीतकार। शैक्षिक सफर मेरा रहा है एमए इंग्लिश बीएड और पूर्व प्रिंसिपल सीबीएसई स्कूल राजस्थान, युवा कवि आगरा आकाशवाणी केंद्र, मुख्य सचेतक आंदोलक बीएड बेरोजगार संघ के रूप में जाना जाता हूँ सर मैं। वर्तमान में मैं सामाजिक मंच सरल प्रेरणा साहित्यिक संस्था साहित्य लोक रजिस्टर्ड और दिव्यांगों की राष्ट्रीय संस्था सक्षम संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं सर।
0: जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: अनुपम जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर आपने। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभिनेता बनूं
0: जी,
1: क्योंकि मुझे लगता था कि समाज की को अगर सही दिशा में एक सही नेतृत्व मिल जाए
0: जी
1: तो एक आदर्श समाज स्थापित किया जा सकता है। मेरे पिता श्री विष्णुदयाल शर्मा सरल जी रेलवे में होते हुए भी उन्होंने अपना नेतृत्व दिया था
0: जी,
1: और एक आदर्श समाज नेता अभिनेता और सरल प्रेरक मोटिवेटर ही प्रदान कर सकता है, इसलिए मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभिनेता बनूं।
0: ओह, तो अब जी सर, तो अभी आप क्या करते हैं?
1: अभी मैं कोचिंग सेंटर में मोटिवेटर हूं
0: जी। अच्छा,
1: सरल प्रेरक के रूप में इंग्लिश टीचिंग करता हूं।
0: आपका तो हिंदी इतना बहुत ही बढ़िया है और आप इंग्लिश, आप दोनों वाइस वर्सा ऐसा बोल सकते हैं कि इंग्लिश भी बोल रहे हो अच्छी तरह से बोल सकते हैं और हिंदी भी,
1: दोनों
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है।
1: ओके सर,
0: तो दोस्तों सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: अनुपम जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे, आपका फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: जैसा अभी सर आपने कहा कि इंग्लिश मेरी अच्छी है, तो इंग्लिश अच्छी का श्रेय मैं अपने श्रद्धेय टीचर जो देवलोक गमन कर चुके हैं, गिरिजाशंकर शुक्ला जी सर
0: जी,
1: इंग्लिश के टीचर थे, जिन्होंने जटिल टॉपिक ग्रामर और ट्रांसलेशन को मैथ के फॉर्मूले के अंदाज में समझाकर मुझे योग्य बनाया, और आज भी वो उनका पढ़ाया हुआ मेरे दिलो दिमाग में अमिट है। दूसरा ड्राइंग टीचर जो विजय सक्सेना जी सर थे, उन्होंने हमेशा मुझे ए ग्रेड दिया और बेहतर ड्राइंग के लिए टिप्स देते रहते थे, तो मेरी आज ड्राइंग बेमिसाल है, और मेरे बच्चों की भी आशीषा और देवांशु और मेरे स्कूल के बच्चों की भी ड्राइंग बेमिसाल है, अवार्ड प्राप्त करते हैं।
0: क्या बात है अनुपम जी, ये बहुत ही कम लोगों को ऐसा नसीब होता है जो बहुत ही, कहने का मतलब है इतने सारा टैलेंट एक इंसान में भरा रहता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
0: बड़ी खुशी हुई मुझे। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा नगमा सुनते हैं।

0: मेरा चौथा सवाल, कौन से तीन शब्द आपको सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं?
1: सर बहुत अच्छा सवाल है ये। मेरे पैतृक गुण मिले हैं मुझे समाजी सेवा करने का, मानव सेवा करने का, तो तीन शब्द हैं जो मुझे मिले हैं, परहित, लिहाज और सरल प्रेरणा, जो कि आदर्श समाज के लिए बेहद जरूरी हैं
0: जी।
1: और जिसको मैंने कला की दृष्टि में अपनाया है अपने जीवन में, अनुगायन, अनुगीत और सरल प्रेरक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में
0: जी।
1: और लिहाज का दूसरा रूप अनुगायन है सर, जो मैं अच्छा प्रमाणित कर पा रहा हूँ अपने गायन में सर।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आइए सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी अनुपम जी?
1: सर, इस संदर्भ में तो एक ही बात कहूंगा कि मेरा स्वभाव, मैं घर में लड़ेता रहा था, बहुत लाड प्यार में पला था, मेरी हर जिद पूरी होती थी। तो एक दिन मेरी जिद पूरी नहीं हुई आलू पराठे की, तो एक दिन मजबूरी बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद बनाऊंगा, मत बनाओ कोई भी मेरे लिए। तो आलू के पराठे बनाए, तो मैंने वहां कहीं पर तो आलू जा रहे थे, कहीं आटा जा रहा था, और आग की लपटों ने भी मुझे झुलसा दिया, स्किन को जला दिया। बड़ी मुश्किल से ये बने, मोटे तो मोटे मोटे जोटे जले फले जैसे भी बने थे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थे। तो सारे बनने के बाद सारे मेरे परिवारजनों ने टेस्ट करने में खा लिए, मुझे बखूबी मुश्किल से मुझे एक दो पीस ही मिला। तो सब लोग कहने लगे ऐसे रोज बनाया करो भाई। तो इस तरह से मैंने ये अपनी जिद पूरी की, और आलू पराठे मैंने पहली बार बनाए, जो कि टेस्टी तो बने लेकिन अच्छे नहीं बने,
0: यानी जल गए थे।
1: जल गए थे और आलू कहीं बाहर निकल निकल के भाग रहे थे उसके। तो मेरा जी, तो इस तरह से
0: अरे वाह,
1: सबको टेस्टी लगे, सबको टेस्टी लगे।
0: तो दोस्तों, सुनते हैं एक शानदार गीत।

0: जाए पट्टी
1: क्या
0: है परेशान।
1: हाथ छोड़।
0: हाई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता
1: क्या बात करता है।

0: अनुपम जी, आपकी हॉबीज क्या है और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: सर, मेरा स्वभाव है कि लोगों के हित में काम करना
0: जी,
1: और मेरे पैतृक गुण हैं, तो मैंने अपनी हॉबीज को चुना। वैसे तो हॉबीज मेरी कई सारी हैं, स्पोर्ट्स में भी है, एजुकेशन में भी है, मोटिवेशन में भी है, लेकिन मानव सेवा को मैंने अपनी मुख्य हॉबी के रूप में अपनाया।
0: अच्छा।
1: और मुझे लगा कि इस हॉबी से एक समाज को सशक्त रूप में सामने लाया जा सकता है, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी अच्छी तरह से अपना जीवन बसर कर पाए।
0: अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो ये सेवा में आप ऐसे क्या करते हैं, जैसे लोग सेवा भाव का आप बोल रहे हैं?
1: जैसे जैसे हाँ, मानव सेवा में जैसे किसी को जरूरतमंद की सेवा करना है, किसी को कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसको मार्गदर्शन देना है
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात कि हमें अपना जीवन, बच्चा अपना जीवन कैसे जिए, तो उसके लिए मैं प्रेरित करता हूँ।
0: अच्छा।
1: उसके जीवन में
0: जी,
1: हाँ जी। और इससे एक मैं ये सामने वाले बच्चों को फायदा भी बताता हूँ कि इस सेवा भाव से, इस हॉबी से मनुष्य को समाज में कहीं भी डर नहीं लगता है, उसे लगता है सब मेरे हैं।
0: ओके
1: जी
0: जी जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: आपकी खुशी के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती है?
1: बहुत ही सही प्रश्न पूछा है सर, और मैं जाने अनजाने में इन बाधाओं को महसूस करता हूँ
0: जी।
1: तो अणुमन की अगर बात माने तो मुझे यही लगता है कि सामने वाले को समझ पाने में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, कि सबको अच्छा समझता हूँ सर मैं, क्योंकि मेरी यदि मानव सेवा की भावना है तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। और हकीकत तो ये है सर कि आज दुनिया में जलन करने वाले, टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं, तो आगे बढ़ने से आपको हर्ष में रोकते रहते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा मेरी यही है। और मुझे खुशी मिलती है लोगों की भलाई करने में, लेकिन मेरी लोग टांग खींचते हैं, तो ये सबसे बड़ी बाधा मुझे लगती है सर, कि मैं सबको अच्छा समझता हूँ।
0: ये तो सही, आप सही कह रहे हो कि अच्छे लोगों की आज कदर नहीं है इस दुनिया में।
1: जी सर,
0: ये आपने बहुत सही बात कही है।
1: जी सर।
0: तो दोस्तों चलिए सुनते एक और नगमा।